सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपके अभिवादन के साथ अब आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 6 बजना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सना

0: तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 110.1 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना

0: आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका स्वागत है। आत्मा हर जीव में मौजूद व अदृश्य, शाश्वत और मूल ऊर्जा है जो शरीर को जीवन प्रदान करती है। भारतीय दर्शन और आध्यात्म के अनुसार आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।

इस संसार में अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा पाई और आत्मा को पाने के रास्ते बताए हैं। लगभग सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक मत से कहा है कि आत्मा अमर है, ना ही कभी जन्म लेती है ना ही उसकी मृत्यु होती है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री।

0: टू एयर यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: परमात्मा का अर्थ है सबसे सर्वोच्च, असीमित और पूर्ण चेतना, जिसे ईश्वर, परम ब्रह्म या फिर परमेश्वर कहा जाता है। विभिन्न भारतीय दर्शनों में जीवात्मा को एक बुद्ध माना जाता है और परमात्मा को संपूर्ण महासागर।

0: ये थी आज की वंदना। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा के साथ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु।
1: सुख कहते किसे हैं? साधारणतया सांसारिक सुख, अर्थागमो नित्यम रोगिता च। अर्थ का आगम होता रहे, नित्य अरोगी बना रहे। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सुंदर पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो। वत्सस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, आज्ञाकारी बेटा हो और अर्थकरी विद्या हो। ये छह प्रकार के सुख हैं। अब दुख छह नहीं है, दुख चार ही हैं। दुख का वर्णन महाभारत में कथा आती है कि जिस समय दुर्योधन के साथ उसके सारे

0: मारे गए तो उनकी माँ गांधारी अपने बालकों के शवों को लेकर के रो रही थी। अचानक भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बुआ जी क्यों रो रही हैं, आपके बालक तो स्वयं ही अपने मरने का कारण बने। तो गांधारी ने कहा कि तुम मेरे नज़रों से दूर चले जाओ, तुमने मेरे मेरे पुत्रों को मरवाया, तुम न होते तो पांडव मेरे पुत्र को नहीं मार पाते। भगवान ने बहुत समझाया, गांधारी जी को समझ में नहीं आया, वो चले गए। अचानक गांधारी जी को भूख प्यास लगने लगी, गांधारी जी व्याकुल हो गई। गांधारी जी ने विचार किया, गांधारी जी ने सोचा क्या करें। दूर उनको दिखाई एक बेर का वृक्ष दिखाई पड़ा, दौड़ती वहाँ गई और जैसे उसे उन्होंने तोड़ना चाहा तो बेर का वृक्ष ऊपर उठने लगा। तो बार बार प्रयास किया, बार बार हाथ कूद कूद करके तोड़ने का प्रयास किया, जब नहीं टूटा तो जिस बालकों के शव को पकड़ के रो रही थी उन्हीं बालक के शवों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके और चरण रख के फल को तोड़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा अभी बुआ जी आप अपने पुत्रों के लिए रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पुत्रों को आपके कारण मेरे पुत्र मारे गए, और उन्हीं पुत्रों के ऊपर अपना चरण रख के आप पैर रख करके और बेर का फल तोड़ रही हैं। तो गांधारी जी ने दुख का वर्णन किया है कि कृष्ण दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है कि वासुदेव जरा कष्टम। पहला दुख वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में इंद्रिय शिथिल हो गया, कोई सुनता नहीं, दृष्टि भी कमज़ोर हो गई और सारी इंद्रियों से उस प्रकार से क्रियाएं नहीं हो रही हैं जैसा पहले होता था। तो उन्होंने कहा वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट है वृद्धावस्था, बुढ़ापा कष्ट का एक स्वरूप है। कष्टम निर्धन जीवनम, उससे बड़ा कष्ट निर्धन जीवन है, और निर्धन जीवन से भी बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। किसी का जवान बेटा मर जाए तो उससे बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। लेकिन कष्टात कष्ट तरम क्षुधा, सबसे बड़ा कष्ट क्षुधा है। पेट के लिए आदमी कुछ भी करता है, जो नहीं करना चाहिए, जो वह चाहता नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से अपने पेट के लिए अपने परिवार के लिए उसे वह भी करना पड़ता है जो वह न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। तो इन चार प्रकार के कष्ट और छह प्रकार के सुखों में हम जीवन जी रहे हैं, और प्रायः जो चौथा कष्ट है वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकात महात कष्टम, कष्टात कष्टतरम क्षुधा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इन क्षुधा तात्पर्य, क्षुधा में उदित जो अग्नि है, किसी को भोजन कराना भी पुण्य इसीलिए माना गया क्योंकि वह एक ऐसा कष्ट है जो प्रत्यक्ष भले ही आपको दिखाई न दे रहा हो लेकिन अप्रत्यक्ष उस कष्ट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इन दुखों में चाहे इन सुखों में हमारा जीवन रचा बसा है कि जो हम सुख चाहते वह मिलता नहीं और दुख से हमें निवृत्ति मिलने वाला नहीं क्योंकि यह दुख का आलय है। तो इन सुख और दुख में, क्योंकि सुख स्वयं की इच्छा है, आज दुख स्वयं अपने आप मिलने वाला है। दुख हम चाहते नहीं फिर भी हमें प्राप्त होता है, और सुख हम चाहते भी हैं तो भी हमें मिलता नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह है सुख का स्वरूप व्यवहारिक जीवन में भौतिकवाद नहीं है, अध्यात्म है, और दुख का स्वरूप तो सबको पता ही है, दुख से सब लोग गुजर रहे हैं, यह दुख और सुख का स्वरूप।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी आज के विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मैं आज के कलाकार होंगे अशोक खोसला। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। प्रातः 7:31 पर पूर्वा सुहानी कार्यक्रम के अंतर्गत, 8:45 पर हिट सुपरहिट और श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आप गाते गुनगुनाते सुन सकेंगे प्रातः 10:05 पर।

11:05 5 मिनट पर मध्यकालीन प्रसार सभा में आप सुन सकेंगे लोकरंग कार्यक्रम। इसमें आज की कलाकार होंगी सुनीता मिश्रा। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दिन 12 बजे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन 12:50 पर। इसमें आज की कलाकार हैं होंगी तमन्ना बानो। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारी मध्यकालीन प्रसार सभा में 11:30 पर गीतांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत, दिन 12:30 पर गाने सुहाने कार्यक्रम के अंतर्गत। उर्दू कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारी केंद्र से दिन 1:15 पे। खेती किसानी कार्यक्रम में दिन 1:50 पर आप सुनेंगे एक बातचीत, विषय होगा मुर्गियों के लिए आहार कैसे बनाएं। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर एसएन लाल और देवता प्रसाद पांडे। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन शाम 5:35।

7-8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय होगा बढ़ते तनाव घटती खुशियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरिओम मिश्रा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज की विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:54 और 44 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर

0: सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है

0: आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के न्यूज ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
6: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
7: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
6: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है, सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
7: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
6: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
7: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
6: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई।

0: और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
2: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर

0: अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: मीडियम वेव 33.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म झुक गया आसमान में। बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत शंकर जय किशन का था। और आइए कार्यक्रम का अगला रंग हमने लिया है फिल्म आंखियों के झरोके से। गीत और संगीत दोनों रविंद्र जैन का है और आवाज हेमलता।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म चोर मचाए शोर में। गीत और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। और आइए एक बार फिर सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म अब्दुल्ला में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आह में। गीत लिखा है शैलेन ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आके इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:59 हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस

0: में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
6: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified five sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defence Minister, NSA, Foreign Secretary and other levels. Suparna Sekya, Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Railway, for the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. More from our correspondent.
7: The sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. Sources said there are concerns that the feature may increase incidence of online frauds, phishing, digital arrest, scams, and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. The sources further said that the ministry has directed Meta to furnish a detailed explanation on this feature within 3 days and not roll out the feature until consultation on the matter is over. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
5: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 20th of February to curb seasonal air pollution in the national capital. We have a report.
8: Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited. The government has also announced that parking charges at authorized parking facilities will be doubled from from 1st November to 28th February, while 50% of employees in government and private offices will work from home from 1st November to 31st January. Demolition work and open dust generating construction activities will remain prohibited from 1st November to 31st January, except for essential public infrastructure projects. Large commercial buildings and major construction sites will be required to install anti-smog guns with Suparna and Arzu. Chirag Jha from News Desk.
9: The government has given 1 year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till 14th of July next year. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on 15th July 2024. He was India's ambassador to China from January 2019 to December 2021. This is Akashvani.

0: to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age quoting Prime Minister Narendra Modi headlines, Government's digital push has transformed India, elaborating that 11 years of Digital India initiatives has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Economic indicators flash green in June, growth engine revving despite global roadblocks, writes the Economic Times. India's economy ended the first quarter of financial year 2027 on a strong footing, with various high-frequency indicators showing robust growth in June, reflecting resilience despite the West Asia war and other external headwinds. The Hindustan Times opens with the headline, ATF, commercial LPG rates cut as crude prices ease, while the Hindu writes, commercial LPG prices reduced by 183 rupees per refill. The Times of India, under a picture of new Indian Army Chief General Dhirat Seth saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs, General Seth said his aim would be to build a tech enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs, new army chief outlines Vijay vision, stresses modernization of army. And finally, the Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cell, build from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming their work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलाक्वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायज़ा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है کہ اقتصادی سلامتی کو

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम हिट सुपर हिट में रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार।

जसपाल को सुन रहे थे फिल्म गीत गाता चल में, और आइए हेमलता को सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोके से।

और आइए मोहम्मद रफी को सुनते हैं फिल्म चित्रलेखा में। साहिर के लिखे गीत को संगीत दिया है रोशन ने।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म एक बार मुस्करा दो में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म मुनीम जी में। साहिर लिधनवी के लिखे गीत को संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म मुनीम जी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट सुपर हिट अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:14 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे अगला कार्यक्रम जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सेट पर आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
3: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गिघासु गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गिघासु गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
4: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हैवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
3: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समस्त सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन

0: का है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दोतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर डलमऊ स्थित वीआईपी गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। माँ गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद केएल शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जाँच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकार द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार

0: के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डो से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान इस संदेश के बाद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL Gold DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 9:29 और 45 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आइए सुनते हैं सेहतनामा। सेहतनामा में शरीके गुफ्तगु हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, आपसे बातचीत की है शम्स आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की है।
2: सामिन, कुदरत ने इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढाला है, उसको तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है और जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर दिमाग, दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें, चलने के लिए दो पैर और खून की गर्दिश और रफ्तार देने के लिए दिल, इन सब से मिलकर बनता है एक खूबसूरत जिस्म। लेकिन इस जिस्म की जब हम हिफाजत करना छोड़ देते हैं तो न जाने कितने अमराज इसी खूबसूरत जिस्म से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम जिस्म के नाम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की खास पेशकश सेहतनामा। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। आज के खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस सेहतनामा में खैर मकदम है।
3: अस्सलाम वालेकुम
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको आम जबान में क्या कहेंगे और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या घरेलू नुस्खे से अगर हम इलाज करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
3: देखिए, आज की जो जिंदगी हम लोगों की है, जो भी चीज़ हम नॉर्मल जिंदगी में खाते पीते हैं
2: जी,
3: उसके अंदर मोस्टली जो चार चीजें जो होती है एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया,
2: राइट,
3: दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, चौथा आपका लिपिड यानी के
2: जी
3: फैट हो गया।
2: फैट हो गया,
3: ये भी एक तरीके चर्बी की एक किस्म है जो खाने से ही हमें मिलती है
2: जी।
3: इसमें यह इक्विलिब्रियम जो होता है वो शरीर को बनाना पड़ता है उसके हिसाब से। जिसमें अल्लाह पाक ने जो भी चीजें दी है सबका कोई ना कोई काम है, ऐसा नहीं किसी को कोई चीज बढ़ी हुई है या किसी चीज घटी हुई है, बस जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता उसकी वजह से कुछ डिजीज वगैरह लाहक हो जाती है।
2: मतलब जो आप बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आम जबान में से हम चर्बी की शक्ल
3: कह सकते हैं,
2: राइट डॉक्टर साहब। बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीड, या ये सब क्या चीज है और इनके क्या मुख्तलिफ काम है, इनके बारे में जरा रोशनी डालें तो हमारे सामने ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे।
3: देखिए, ये भी हमने बताया कि ये किस्म है चर्बी की
2: जी।
3: जैसे आपने बताया कि LDL, ये भी एक तरह की चर्बी होती है और बेसिकली जो भी चीजें जिसमें होती है उसका कोई ना कोई काम होता है। जो LDL होता है इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए और हमारे

0: शरीर को एनर्जी देने के लिए या बहुत से एंजाइम्स होते हैं उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं ये
1: okay.
0: और अगर ये सही मात्रा में शरीर में ब्लड में पाई जा रही है तो ये फंक्शन काम करते हैं और अगर ये इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये डिसरेगुलेशन में डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या ऐसा भी होता है कि किसी के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, ऐसा सही है?
0: देखिए, इसमें जो आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है।
1: ओके,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक डायबिटीज का मेन वजह है इसकी।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो सुन रहे हैं इस वक्त, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 200 से ऊपर निकल गया, 250, 270, 300, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उन्हें के अपने घरेलू कौन से नुस्खे जो आसानी से मिल सके हम उसके इस्तेमाल करें? आमतौर पर लोग इस वक्त एस्ट्रोवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन तो ये कॉमन है और जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने अपने घर पर इसका इलाज करें लेकिन एक माहिर तिब्बे यूनानी से मशवरा लेके।
0: देखिए, मेन जो होता है, जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की करते हैं
1: जी,
0: देखिए हमारी बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन्स जो होता है हमारा लीवर होता है, जो कि किचन होता है मेरा।
1: हाँ हाँ।
0: अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। इसमें मेन है कि जब लीवर में हरारत बढ़ती है, हम लोग के यूनानी टिप के हिसाब से हम लोग को चार चीजों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो एक सफरा है, सौदा है, बलगम है और दम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है। तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि किसकी मात्रा कम या किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर बॉडी में बलगमियत बढ़ती, बलगमियत का मतलब ये होता है कि आदमी की जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है, जब प्रोसेस स्लो होता है यानी कि लीवर जो होता है थोड़ा सा कम फंक्शन में आता है तो ये सब चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है खून में, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है इन चीजों को मेटाबॉलाइज करके और उसके रीनल यानी कि गुर्दे के जरिए उसको शरीर के बाहर निकाल
1: देना। बिल्कुल।
0: अगर वो चीज कम काम कर रहा है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो धीरे धीरे ब्लड में आके जमने लगती है। तो मेन वजह हमें कि जो मेरा लीवर है उसको सबसे पहले हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लीवर सही होगा तो उम्मीद है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। तो मेन लीवर को करने के लिए बहुत से दवाएं हम लोग के पास होती है। इसमें हम लोग जो होता है मेन दवाएं जो होती है वो गर्म खुश्क दवाएं देते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये सब जो होती है पेशेंट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती है। पेशेंट के मिजाज अगर गर्म है तो उसको हम ठंडी दवाएं देते हैं।
1: ओके।
0: ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल के मिजाज हम लोग देखते हैं कि वो उस किस लेवल का हो रहा है तो उसी के हिसाब से उसकी दवाएं हम लोग तजवीज करते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें सबसे मेन चीज हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग है अफसंतीन। अफसंतीन जो होता है उसको हम लोग उसका जुशादा बना के उबाल के उसको पेशेंट को पिलवाते हैं।
1: सब ये ब्रांड नेम तो नहीं है अफसंतीन?
0: अफसंतीन एक मुफरत दवा है, अफसंतीन सिंगल ड्रग है, बहुत अच्छी है ये। और अर्क कास्टिंग होती है, कास्टिंग तरीके की मुफरत दवा हम लोगों की होती है, बहुत अच्छी ड्रग है।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्हें अर्जुन छाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है बिलखसूस वो पलाकी है या एक अर्क मकोह है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में जरा रोशनी डालें।
0: देखिए, हमने बताया कि हम लोग का जो पेशेंट जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जो ट्रीटमेंट जो होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: जी जी।
0: अगर हमने आपसे पहले ही कहा कि लीवर में हम देखते हैं कि लीवर में लीवर की हरारत बढ़ी हुई है या लीवर में बरूदत बढ़ी हुई, यानी कि उसका डिसफंक्शन थोड़ा कम स्लो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से दवाओं की तजवीज हम लोग करते हैं।
1: अच्छा
0: जी जी।
1: डॉक्टर साहब, एक तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि सेहत किसी की देख ली, पेट निकला हुआ देख लिया, ओबेसिटी उसकी है, अब हम पहले ही से गेस कर लेंगे कि ये बंदा, इसका तो कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा आपने देखा है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसके चांसेस रहते हैं?
0: बिल्कुल रहते हैं। मेन जो वजूहत हमने बताई है कि भाई जो लाइफ स्टाइल हमारा आज हो रहा है उसकी वजह से मेन एक वजूहत, लेकिन एक इसका जेनेटिक कॉज भी होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट जो आप दुबले बता रहे हैं कि दुबले पेशेंट में ये चीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि वो हो सकता है जेनेटिक हो उनका, वो उनके पेरेंट्स में या उनके पूर्वज में वो चीज रही हो, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर उसमें रहता है।
1: अगर जेनेटिक नहीं है तो?
0: अगर जेनेटिक नहीं है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हम लोग का ये एक नॉर्म्स होता है कि भाई अगर ओबेसिटी किसी को है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर ये पतले लोगों में चीजें हो रही हैं जब तब तो समझ में आ रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया है भाई, उसकी ट्रीटमेंट जैसा कि अभी आपने तिब्बे यूनानी के हवाले से बताया, अगर हमारे साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बहुत सेहतमंद लोग हैं, उनको दिन भर में कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे उनका जो फैट है वो कम हो सके, खत्म हो जाए, और उनका सुबह और शाम की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, शाम का खाना कितने बजे, इन सब पर भी रोशनी डालें।
0: देखिए, ओबेसिटी का अगर देखें कि ये एक सिंगल बीमारी नहीं है
1: जी,
0: इसको हम लोग पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप बोलते हैं। ओबेसिटी में बेसिकली एक जो आप देखेंगे तो अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे, दिमाग एक उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा दिमाग जो होता है एक इसका मेन हार्मोन होता है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी एक फैक्टर होता है उसका। और सेकंड पे आपका आता है कि आपका जो रहन सहन है कि ये बिल्कुल डल आपकी लाइफ हो रही है, आप आराम से अपना उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपका ये चीजें हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और आपका तीसरा आपका खान पान हो गया कि आप किस तरीके की चीजों को खान पान आप ले रहे हैं, किस तरीके नाश्ता कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, मतलब उस डाइट की भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है।

0: और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस टाइम खाना खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या चीज खा रहा है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हम डे वन शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए मैं आपके सामने पेशेंट हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे सुबह का नाश्ते में सबसे पहले क्या लेना है और कितने बजे नाश्ता करना है।
0: देखिए सुबह का बेहतर है कि नाश्ता अराउंड 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए और मॉर्निंग की शुरुआत जो होना चाहिए आपको प्रोटीन डाइट से करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट हमारे लिए, प्रोटीन ऐसी चीज होती है जो कि मेरी सारी रिपेयरिंग के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको रिपेयरिंग का काम करती है, बॉडी बिल्डअप करती है। तो हमें सबसे पहले प्रोटीन डाइट से शुरू करना चाहिए। प्रोटीन में स्पेशली आपका हो गया स्प्राउट्स हो गए आपकी और आपके चने हो गए, चने में स्पेशली काबली चना हो गया आपका और मूंग दाल हो गई आपकी, ये अंकुरित चीजें जो होती है सुबह की मॉर्निंग डाइट में आपको लेना बेहतर है।
1: ओके, क्या हम सुबह के नाश्ते में अंडा ले सकते हैं?
0: अंडा ले सकते हैं बिल्कुल, प्रोटीन डाइट उसमें बढ़िया।
1: सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने के बीच में तकरीबन कितने घंटे का फर्क होना चाहिए?
0: कोई भी खाना हजम करने के कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं पूरा उसको मेटाबोलाइज होकर एक नॉर्मल उसमें खाना। आप जनरली आप मॉर्निंग में यह है कि आप 12 बजे तक की 11 बजे तक खाना ले सकते हैं।
1: ओके, एक परसेप्शन और यहाँ मेरे सामने आ रहा है, अक्सर ये कहा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जो मोटे होते हैं कहा जाता है कि भाई आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते, ये परसेप्शन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक सही है?
0: देखिए खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए, एक चीज रखिए पहले या खाना खाइए या पानी पीजिए।
1: अच्छा,
0: तो खाने एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा 40 मिनट से 1 घंटे तक की उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए।
1: चलिए सुबह के नाश्ते में डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया, अब हम आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने के में किस तरह की डाइट होनी चाहिए?
0: देखिए दोपहर में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं।
1: ओके,
0: आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो एक नॉर्मल डाइट है वो आपको ले लेनी चाहिए।
1: ठीक है,
0: दोपहर का खाना तो आप स्ट्रॉन्ग थोड़ा ले सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा छूट है।
1: अब रात के खाने पर बात करते हैं कि रात का खाना कितने बजे होना चाहिए और क्या होना चाहिए।
0: देखिए हम लोग में यूनानी और आयुर्वेद दोनों चीजों में ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए,
1: ये इम्पोर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल से आजकल 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, कि वो रात के 10 बज जाते हैं 11 बज जाते हैं खाना खाते हुए। डॉक्टर साहब अब इन चीजों का जो असर होता है एक और चीज सामने आ रही है, बिलखसूस नौजवानों में हमारे हम सब में देखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? कई 20 से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो नौजवान तबका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है?
0: देखिए ब्लड प्रेशर की वजह पे आ जाए तो आज भी मॉडर्न साइंस जो भी वो कह रहे हैं कि 80% जो होती है वो जो इजेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो नॉन इडियोपैथिक कॉज होता है उसका। हाँ 20% में कुछ वजूहत होती है आपका, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक वजह हो सकती है, इसके अलावा ओबेसिटी एक वजह हो सकती है, कुछ रीनल कॉजेस भी होते हैं उसके अंदर। तो इजेंशियल, लेकिन हम लोग जो यूनानी मेडिसिन है उसका एक ये कि हमारा लाइफ स्टाइल है एक उसकी बड़ी वजह हो गई है। हमने बताया स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: जो हमारी सोच है हमारी वो है कि हर वक्त हम उसी में मुब्तला रहते हैं कि भाई रात में सो रहे हैं तो भी हम इजी नहीं है, जो डीप स्लीप हमारी नहीं हो रही, जो हमारा रात में रिपेयरिंग का काम होता है, बॉडी सोने के टाइम सब रिपेयरिंग का काम करती है, वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं आती, जिसकी वजह से कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वजह ये भी है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है।
1: अच्छा, ये जो सूजन हो रही है उसकी वजह से हाइपरटेंशन?
0: बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है।
1: ओके, ये एक नई चीज हमारे सामने के लिए सामने आई है कि जो इंटरनल सूजन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है।
0: जी जी
1: डॉक्टर साहब, आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात आ रही है, तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है?
0: देखिए मेरे पास जो मेन मेरा हार्ट है वो एक ऑर्गन, मतलब एक जो प्राइम ऑर्गन कहलाता है उसको, ठीक है, उसमें चैंबर्स होते हैं, 4 चैंबर्स होते हैं, सभी को पता है वो, और उसमें एक काम होता है कि बॉडी को पूरा ब्लड जो होता है शरीर तक पहुंचाना, और एक उसमें एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि जब वो रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट जो होता है हमारा सिकुड़ता है यानी कंट्रक्शन करता है, तो पूरा हार्ट ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जाता है।
1: हाँ।
0: तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आर्टरीज में जो बढ़ता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है यानी कि अपने रिलैक्सिंग पॉइंट पे तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग।
1: मतलब जो दबाव के वक्त जिस्म के अंदर फ्लो बढ़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो जो सिस्टोलिक हो गया और वापस जो आराम की पोजीशन में आ रहा है वो हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर मान लीजिए किसी का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये सूरत हाल किस चीज को इंडिकेट करती है?
0: देखिए डायस्टोलिक हमने बताया ना जब रिलैक्सिंग होता है हार्ट, कोई भी चीज अगर रुकेगी ज्यादा देर तक की शरीर में यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस पे, इसको देखना जरूरी होता है कि ये एक मेजर वजह होती है कॉम्प्लिकेशन की।
1: ओके,
0: तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए।
1: अभी हमने एक साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका 122 और 95 ये आया, यानी कि डायस्टोलिक उसका 95 था, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है।
0: जी जी, वो अलार्मिंग साइन है हमारे लिए,
1: अलार्मिंग साइन है। तो उसको हम किस तरह से उसको कैसे मतलब एग्जामिन करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा टेस्ट करें उसके लिए हम?
0: देखिए जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल,
1: होगी
0: और आपके FT करा लेते हैं उसमें, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं कि उसमें देख लेते प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है, कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है।
1: जी,
0: मेन वजूहत यही होता है, इसको देखते हैं पहले हम लोग।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का ये

0: बढ़ रहा है, ये 95 और 99 और 100 के आसपास हो गया है, तो क्या उसको मेडिसिन लेनी चाहिए?
1: जी देखिए, उसको वेट एंड वॉच करने के लिए उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करानी चाहिए
0: जी,
1: और साथ में उसको एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए और उसकी स्लीप वगैरह को प्रॉपर करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो हल्का हम लोग मुदिरात वगैरह, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम लोग मुदिरात देते हैं, तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह वो चीज कंट्रोल हो जाती है।
0: ऐसे कोई मसाले मौजूद हैं जिनसे इस तरह का ब्लड प्रेशर घर में हम काढ़ा बना लें या कुछ बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है?
1: देखिए, जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो हम लोग को रेमेडीज है वो आपका चुकंदर, जो नाम सुना होगा।
0: अच्छा, चुकंदर, जी जी जी बिल्कुल।
1: उसमें NO2NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो की आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तो बेहतर है उसको या तो एज ए सलाद या उसकी सब्जी बना के या इवन इसका जूस बना के आप उसको लेंगे तो उम्मीद है उससे फर्क पड़ जाता है
0: चुकंदर को।
1: और उसमें मेन में उसका आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इन मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इनकी जो आर्टरीज होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग हैं।
0: अच्छा,
1: कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कम पड़ेगा उसको।
0: जी जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है?
1: देखिए, स्ट्रेस हम एक हार्मोन आपका बेर में वही नाम ले रहे हैं, कॉर्टिसोल। बहुत बड़ी चीज है, आदमी इसको अब उस पर मॉडर्न साइंस भी काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए।
0: जी जी,
1: देखिए एक सबसे अच्छी चीज जो ब्रिस्क वॉक आपकी है, सुबह उठ के कम से कम 30-45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए। उससे आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपको वो लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है स्ट्रेस के लिए।
0: जी, क्या आजकल जो लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे रात के 2 बज जाते 3 बज जाते हैं और फिर उनको जो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रेस और इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? हमारे नौजवान तबके जो है उस तबके को आप खास तौर से ये पैगाम दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको।
1: देखिए, हमने एक चीज आपको पहले बताई कि भाई जो रात का टाइम ऊपर बनाया वो सोने के लिए बनाया,
0: बिल्कुल।
1: उसमें कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, ये बैलेंसिंग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, और ये हमने कहा बॉडी रिपेयरिंग का काम जो होती है रात ही में करती है। तो रिपेयरिंग का जो काम रात में होता है, अगर हम उस टाइम पे अपना हम एक्टिविटी करते रहेंगे, जाहिर है वो रिपेयरिंग बॉडी की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर वही कॉज होगा। इन्फ्लेमेशन आएगा तो इन्फ्लेमेशन के बीपी है, शुगर है, आपको ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी।
0: बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान लंग्स पर हम बात करना जरूरी समझते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाए, आप उसके बारे में जरूर हमारे सामने को बताएं कि फेफड़े के ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्सीजन लेने के लिए क्या किया जा सकता है।
1: देखिए, सुबह का जो मॉर्निंग वॉक बता रहे हैं आपको, सुबह में जो ताजगी होती है, जो चीजों में होती है, उसमें आप केवल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज होती है और कुछ ऐसे सिंपल अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपका जो लंग फंक्शन होगा बेहतर होगा उससे।
0: अच्छा, कहते हैं कि आप सांस खींच के एक बार छोड़ दीजिए और आप उसके बाद वेट करते रहिए सेकंड की तरह, की कितने सेकंड आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ही भागदौड़ भरी होगी, आप खुद जब थक जाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी से, तो रिलैक्स करने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: देखिए, हर आदमी का एक अपना शौक होता है।
0: बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली।
1: जी जी, एक शौक होना चाहिए और बेहतर है कि उसमें आउटडोर गेम आप जरूर शामिल करें।
0: जी,
1: आप आधे घंटे के लिए ऐसी चीज रखें कि आप जाके उस टाइम अपने सारे काम को भूल गए, अपना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए आप।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसमें आप रिलैक्सिंग एक फील करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक वो अलग एक माहौल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ और एक टाइम एक जरूर फिक्स करें, वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत सारी चीजों को दूर करेगी।
0: मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है इस दौरान, और बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उससे बॉडी पे काफी बेहतर असर पड़ता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे दोस्त लोग जैसे डॉक्टर सईद अख्तर साहब बैठे हैं या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं और जाके 1-2 घंटा पसीना हमने बहा लिया और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो यकीनन एक अलग ही उसका मजा होता है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे कुछ सामान को पैगाम देना चाहेंगे?
1: देखिए, आज की लाइफ हम लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हमने खुद बना रखी है उसको,
0: बिल्कुल।
1: तो थोड़ा सा उसको इजी कर लीजिए। इजी का मतलब इन सेंस ये हो गया कि भाई सुबह उठिए तो कम से कुछ टाइम अपने लिए आप जरूर रखिए। भाई सेहत ऊपर वाले ने सबसे बड़ी नेमत दी है, ये तो मान के चलिए आप। जब तक आपके पास सेहत तभी आप सबके लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने देश के लिए, आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम बना लीजिए, भाई एक्सरसाइज जरूर आप कम से कम 30-45 मिनट्स की एक मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक जरूर रखिए।
0: ओके,
1: और इसके लिए डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइट को बहुत सिलेक्टेड, बहुत क्वांटिटी क्वालिटी ये सब मेंटेन रखिए डाइट की, क्योंकि जो चीज हमारे जिस्म में जाएगी जाहिर है उसके असरात मेरे ऊपर होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर उसको हम सही से रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीज सही।
0: कहते हैं कि डाइट में नॉनवेज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या सही है? हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको, ये सारी चीजें डॉक्टर साहब सही है?
1: देखिए, अति किसी चीज की भी नुकसान दे।
0: हाँ, ये तो है।
1: और हर बॉडी का, देखिए हमने बताया था कि हम लोग यूनानी मेडिसिन के हिसाब से या अपना कॉन्सेप्ट जो होता है कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और उसकी इंडिविजुअल डाइट होती है।
0: बिल्कुल,
1: सब आदमी के लिए जरूरी नहीं कि वही चीज हमको हो सकता है फायदा करे, हो सकता आपको नहीं सूट करे,
0: ये बात तो है।
1: तो ये इन चीजों का हम लोग तो उस तरीके से टेलर डाइट भी देते हैं उसी तरीके सब लोगों की।

0: डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए, इसके इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जो हो वो आप हमारे सामेन को बताएं जो घर पर इस्तेमाल करें।
1: जी जी, देखिए आपका सौंफ हो गई, आप बादियान जिसको कहते हैं हम लोग, सौंफ हो गई और आपकी इलायची हो गई,
0: जी
1: ये बहुत अच्छी मुदरी बॉल दवा होती है। इनको सिंपल सिर्फ बॉयल करके आप सुबह डेली नहर मुल लीजिए तो उससे ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल
0: ये बॉयल करके और इसका जो पानी होता है उसको साइड कर देंगे या कैसे?
1: इसको आपने
0: बॉयल किया,
1: बॉयल कर लिया,
0: हाँ।
1: एक चम्मच सौंफ हो गई आपकी, हाँ। चार पांच पीस आपकी
0: इलायची हो गई,
1: इलायची होगी, उसको बॉयल कर लीजिए, उसको छान के पी लीजिए,
0: पानी पीना है उसका,
1: पानी पीना है उसका,
0: हाँ, यानी कि वो काढ़ा एक तरह एक शक्ल में हो गया।
1: जी जी जी,
0: हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमारे सामईन हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी डॉक्टर से लगातार ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी जो शिरकत रही वो हमारे सामईन के लिए बहुत मुफीद है, और इस खूबसूरत और खैरामद गुफ्तगु के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन, ये था हमारा आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा, जिसमें शिरकत करने वाले मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करने चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को, आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
3: मीडियम 33.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत का आप कार्यक्रम सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
7: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA BPharma MPharma और DPharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: जिंदगी बहुत कीमती।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं अशोक खोसला। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं कुछ गजल।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अशोक खोसला को।

0: ये थे अशोक खोसला। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के

0: पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं के पसंद पर आधारित कार्यक्रम सुनिए, गाने गुनगुनाते। मैं हूं आपका अपना प्यारा रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सुरीले और मन को सुकून देने वाले कार्यक्रम गाने गुनगुनाते में। अगले 55 मिनट तक इस दौरान मैं आप सुनेंगे अपनी पसंद के वे मधुर और सदाबहार फिल्मी गीत जिनकी फरमाइश आपने हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भेजी है। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और रिश्तों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कड़ी भी है। आइए आज के सुरीले सफर में हम सभी मिलकर उन गीतों को गुनगुनाएं जो दिल को छू लेते हैं और जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को फिल्म एक दूजे के लिए। में आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये गीत श्रोताओं आज भी उतना ही ताज़ा और मधुर लगता है जितना अपने आप समय में था। ये गीत सुनने की इच्छा व्यक्त की थी ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद्र, रागिनी, रिया, रेनु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म आर पार से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल को संगीत दिया है ओपी नैयर ने और आवाज गीता दत्त की है। इस गीत की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके बहुत से साथी, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप आकाशवाणी गोरखपुर के केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने गुनगुनाते और मैं हूं आपका प्यारा रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा। श्रोताओं, कहा जाता है कि अच्छा संगीत समय की सीमाओं से परे होता है। पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन मधुर धुनें हमें हमेशा दिलों में अपनी जगह बनाए रखती हैं। अब अगली पेशकश फिल्म दो रास्ते से, आवाज मोहम्मद रफी के, फरमाइश की है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शफात और उनके बहुत सारे दोस्त।
2: कहां से?

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे।
11: श्रोताओं, आपका स्नेह और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपके संदेश और फरमाइशें इस कार्यक्रम को और भी आत्मीय बना देते हैं। तो आपसे एक गुजारिश कि आप अपनी फरमाइशें हमारे फेसबुक के माध्यम से भेजते रहें। और अब सुनिए एक और सदाबहार नगमा फिल्म सरस्वती चंद से, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत की फरमाइश की है गंज डुंडवारा से शमसुल कुमार राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान और फैजल खान और उनके घर परिवार के लोगों।

आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म मोरा में। इस गीत की फरमाइश की थी मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चैतनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। संगीत का ये कारवां अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी कुछ और खूबसूरत गीत बाकी है। उसके पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: और आइए अगली फरमाइश है फिल्म पेंगे से किशोर कुमार के लिए। फरमाइश करने वाले हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया हसन, हाफिज, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित कार्यक्रम गाने गुनगुनाने, और आपके साथ है आपका प्यारा रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी कई और मधुर गीत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्वामी से। गायक कलाकार हैं येसुदास, और इस गीत को पसंद करने वाले हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म ख़ानदान में। इस गीत की फरमाइश की थी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

इस गीत की फरमाइश की है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और उनके बहुत सारे दोस्तों ने। लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं फिल्म आंखें।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: और श्रोताओं, अब समय है आज के कार्यक्रम के अंतिम गीत का। आशा है कि आज प्रस्तुत किए गए सभी गीत आपको पसंद आए होंगे और आपकी सुबह को बहुत मधुर बना गए होंगे।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म मेरा नाम जोकर से। आवाज़ मुकेश की है, राम सिंहपुर फरमाइश करने वाले हैं। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अंजाम, राहुल और भानु। श्रोताओं, आज की प्रस्तुत किए गए गीत उम्मीद है आपको बेहद पसंद आए होंगे।

की फरमाइशें शामिल नहीं हो सकी, उनसे अनुरोध है कि वे निराश ना हों। अपनी पसंद के गीत हमारे फेसबुक पेज पर भेजते रहें। अपनी फरमाइशों को आगामी कार्यक्रमों में अवश्य शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा को। प्यार भरा नमस्कार।

थे श्रोता अपनी फेसबुक के फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम गाने गुनगुनाने गुनगुनाते। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 10:59 और 24 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
3: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
4: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
8: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
7: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
8: देश के
9: हर मैदान फतेह।
10: आकाशवाणी गोरखपुर से अब होगा आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सप्ताह के सातों दिन यानी हर सुबह 10:05 पर, और रिकॉर्डिंग रोजाना सुबह 11 से 12 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर 0551220538 पर कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत सात के सातों दिन सिर्फ आकाशवाणी गोरखपुर से हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हेलो फरमाइश हर सुबह 10:05 पर।
11: और आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग में, सुनीता मिश्रा को एक बार और।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और हिंदी फिल्म मुक्ति का गीत।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: अभी अपने तो फिर नौकर का ही गीत।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: और ये सुनते हैं फिल्म बेनाम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म किताब में राजकुमारी को। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कुछ ही पलों में।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है और
2: हाँ,
3: ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग

0: 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है। आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा।

0: का है।
1: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
2: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
1: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
2: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
2: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? गली में बैठ कर
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: इसके पास
9: नहीं
8: जा रहा है।
9: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे करेगा?
2: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
10: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
11: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
7: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
6: महाराज की जय हो।
12: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो।
13: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
14: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह,

0: क्या नाम है बेटी?
1: जी मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति, तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं

0: हुआ
1: जी
0: इसमें। जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअलिटी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ दो बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
1: अच्छा।
0: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर
0: जी।
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक, जी जी जी।
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर, बहुत जबरदस्त
1: जी
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या, मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। जी, जी। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
1: क्या बात है,
0: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी
0: जी जी।
1: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो, जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
0: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
1: अच्छा।
0: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
1: जी
0: जी।
1: और दो बार आपको मिला है?
0: दो बार गैलेंट्री।
1: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं जैसे कि

0: आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
0: अच्छा,
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और हाँ सब मिलकर,
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान

0: कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको
1: जी
0: ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल
0: जी
1: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी।
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
1: अच्छा।
0: में ज्वाइन किया। जी
1: जी तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा असम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: वहाँ भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: वहाँ फिर एनडीएफबी के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: इंडो भूटान,
1: तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा।
0: असम जल रही थी एनडीएबी का उससे,
1: अच्छा,
0: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफी काम किए थे। हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा।
0: हाँ
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी,
1: जी
0: जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ। जी
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनाबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत? अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहां से शुरुआत हुआ। जी
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन घुसाई गांव में। जी जी
1: अच्छा। फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
0: हाँ 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा।
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
1: अच्छा।
0: असम में आ गई हॉली में। जी
1: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
0: हाँ 72 बटालियन सिक्किम युक्सुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी
0: है।
1: अच्छा एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में,
0: 50,
1: तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ। लेकिन
1: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज को हम याद
1: अच्छा
0: करते हैं। जी
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था?
0: जी
1: जी।

0: अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ,
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज हो जाता है।
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो।
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑवर बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी, ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें,
0: फोर्स से ही मैंने की। जी जी जी
1: जी, आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स गोल्डम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
1: अच्छा,
0: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसे ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
0: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं।
1: अच्छा,
0: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
1: अच्छा,
0: चलने से लेकर हर चीज। और उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल से कैसे लड़ना है।

0: है,
1: यानी कि
0: आतंकवादी
1: पूरा
0: से कैसे लड़ना है,
1: जी
0: उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
1: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर,
0: जी जी,
1: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
0: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें, जी जी जी, जंगल
1: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
0: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है,
1: अच्छा,
0: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है,
1: तो एक लीटर पानी में,
0: 1 लीटर पानी में,
1: और वो भी 72 घंटे,
0: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
0: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है,
1: 1 महीना,
0: जी जी जी जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
0: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज, मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
1: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
0: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा
0: जी,
1: भरे
0: जी,
1: रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
0: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
1: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
0: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
1: अच्छा,
0: अचानक अचानक सब चीज होता है,
1: पहले से नहीं बताते हैं?
0: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके,
0: हाँ,
1: एक तरह से ड्रिल ड्रिल
0: ड्रिल ड्रिल, हाँ,
1: अच्छा,
0: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
1: मोटिवेटेड रखने।
0: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा एक टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
1: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहां भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी हाँ। और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
1: जी।
0: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
1: जी। आपके आपके सर कोर्सेस तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेस किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है
0: जी जी जी जी।
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
1: अच्छा
0: करना है जी, उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है,
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
1: जी जी।
0: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
1: जी
0: जी।
1: सर ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है, या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए।
1: अच्छा।
0: जी
1: सर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
0: जी,
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा।

0: बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए।
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचरस और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं?
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरियंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस एसोसिएशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं।

0: देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर के वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता देंगे क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतना

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अवधि गीत। कलाकार हैं मालिनी अवस्थी।

0: है। साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन

0: परिवर्तन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा तीन दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में, और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, हमारे कद से या पद से बड़े होने का तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक हम किसी और के काम ना आ सकें। इसलिए अपना स्वभाव हमेशा विनम्र रखें और कोशिश करें कि आप

किसी के काम आ सके। दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस हर वर्ष 2 जुलाई को पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जाता है। खेल पत्रकार हमारे और खेल की दुनिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। वो मैदान पर होने वाले हर रोमांचक पल, खिलाड़ियों के संघर्ष और उनकी जीत की कहानियों को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। साल 1994 में AIPS की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल 2 जुलाई को खेल पत्रकारों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। खेल पत्रकारिता केवल स्कोर कार्ड बताने या मैच का नतीजा दिखाने तक सीमित नहीं होता। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पत्रकारों की कहानियाँ नए और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती हैं। खेल पत्रकारों की कहानियाँ सुनकर युवा प्रेरित होते हैं और खेल पत्रकार खेलों में होने वाले भ्रष्टाचार और राजनीति को उजागर कर पारदर्शिता भी लाते हैं। ये दिन केवल क्रिकेट या फुटबॉल जैसे बड़े खेलों ही नहीं बल्कि छोटे और स्थानीय खेलों को भी मुख्य धारा में लाने की याद दिलाता है। एक खेल पत्रकार का जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। उन्हें हर मौसम में दिन रात मैदान पर डटे रहना पड़ता है। सटीक और निष्पक्ष खबर देने के लिए उन्हें भारी मानसिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। लगातार यात्राएं करना और अपने परिवार से दूर रहना उनकी दिनचर्या के लिए आम बात होती है। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर सबसे पहले और सही खबर देना उनके लिए एक और बड़ी चुनौती बन गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस खेल मीडिया जगत के पेशेवरों के कठिन परिश्रम और समर्पण को सलाम करने का दिन है। खेल आज केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वैश्विक एकता का माध्यम बन चुके हैं और इसमें खेल पत्रकारों की भूमिका अतुलनीय है। हमें उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए और खेल पत्रकारिता में आचार संहिता और निष्पक्षता का समर्थन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास का एक मील का पत्थर है। ये केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि युद्ध के बाद शांति स्थापना का एक बड़ा प्रयास था। हर साल इस समझौते की वर्षगांठ दोनों देशों को शांति और कूटनीति की याद दिलाती है। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बातचीत शुरू हुई। इसी बातचीत का परिणाम शिमला समझौता था। यह ऐतिहासिक समझौता 2 जुलाई सन 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। इस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इसी कारण हर साल 2 जुलाई को शिमला समझौता वर्षगांठ के रूप में याद किया जाता है। शिमला समझौते में कई महत्वपूर्ण

निर्णय लिए गए थे, जिनमें कुछ मुख्य हैं: द्विपक्षीय बातचीत, नियंत्रण रेखा, शांति की प्रतिबद्धता और कैदियों की रिहाई। दोनों देशों ने तय किया कि वो अपने सभी विवादों को किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बिना आपस में बैठकर सुलझाएंगे। युद्ध के बाद दोनों सेनाओं की स्थिति को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी गई। दोनों देशों ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया। दोस्तों, इसके तहत भारत ने युद्ध के दौरान बंदी बनाए लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया। आज के संदर्भ में शिमला समझौता वर्षगांठ हमें ये सिखाता है कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता। बातचीत के जरिए बड़े से बड़े विवाद को हल किया जा सकता है। शिमला समझौता दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने का एक ऐतिहासिक संकल्प था। इसकी वर्षगांठ मनाने का असली उद्देश्य दोनों देशों को याद दिलाना है कि वो युद्ध की जगह विकास, प्रगति और शांति का रास्ता चुने। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।
6: दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा का सीधा अर्थ होता है साफ सफाई रखना। केवल हमारा निजी काम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समाज और देश की सबसे बड़ी सेवा होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समय समय पर स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया जाता है। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा एक ऐसा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि अपने आसपास को साफ रखना भगवान की पूजा करने जितना ही पवित्र काम है। जब हम अपने घर, स्कूल, गली और सार्वजनिक जगहों को साफ रखते हैं तो हम बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को दूर भगाते हैं। ये सफाई केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी और सच्ची देशभक्ति है। एक पुराना वाक्य है, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता बनाए रखने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। साफ वातावरण रहने से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां नहीं फैलती। साफ सुथरी जगह पर रहने से हमारा मन भी खुश रहता है, जिससे तनाव कम होता है। जो देश साफ होता है वहाँ पर्यटन बढ़ता है और बीमारियाँ कम होने से सरकार का पैसा भी बचता है। इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे कचरा हमेशा केवल डस्टबिन में ही डालें, गीला और सूखा कचरा अलग कर दें, हरे और नीले डस्टबिन का सही इस्तेमाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। अपने स्कूल, मोहल्ले या सोसाइटी में होने वाले सफाई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। दोस्तों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये रोज़ की आदत है। जब तक देश का हर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि देश को साफ रखना उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तब तक कोई भी अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी को फैलाने देंगे। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी हमारा भारत स्वस्थ और मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी, पेश कर रही थी शिवलता यादव। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
6: घर आंगन कार्यक्रम में सारे श्रोतालोगन के बहुत बहुत स्वागत बा और नमस्ते भी बा। और हम हैं आपका रेडियो सखी सुषमा। हमन के कार्यक्रम में शिक्षा, मनोरंजन तथा जानकारी के समावेश होला। और हमन के जनबा कि हर दिन अपने श्रोता लोगन से कुछ ना कुछ ओ दिन के विशेष जौन होला ओ पे चर्चा कैल जाला। आज एगो ऐसन दिन बा, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस हवे, जौने के खेल में उनके योगदान खातिर मनावल जाला। खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनावल जाला। पत्रकार के अंतर्गत हमन के जौने जाने नहीं कि हमन के कार्यक्रम पत्रकार लोग जौन होले ना,

हर क्षेत्र के बारे में हमन के जानकारी दे लें। और उसे ने एक छो क्षेत्र बा कि हमन के खेल के बारे में जौन भी गतिविधि होता ओकरे बारे में जानकारी पत्रकार लोग दे लें, तो उन पत्रकार लोगन के ए खेल में जौन भी योगदान होला ओके सराहना करे खातिर और उनके योगदान के सराहे खातिर हमन के दिवस के मनावल जाला। तही के साथ अब हमन के कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ और सुनल जाए एगो गीत।

बहन सब सुनत रहली लल्ली वर्मा जी के आवाज में ई लोकगीत, और ये के साथे कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा। और हम चाहते हैं कि बहन लोगन के साथे साथे एगो और गीत सुना दहल जा, तो बहन लोग आई सुन लल जाए एगो और गीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
7: संदेश के पहले आप सुनत रहने एक गीत, और यही के साथ अपने बेटकी के आगे बढ़ाओ जा। देखिए बहन, कोनो भी लड़के होला ना, परिवार में कोनो लड़के होला, वो पूरी तरीके से स्वस्थ होला ना, तब परिवार ओके हंसी खुशी ओके स्वस्थ देके पूरी तरीके से आनंदित रहला। लेकिन कबो कबो ना कोनो परिवार में लड़के जौन बाटन जन्मजात विकृतियन के साथ पैदा होला, तो उनके ई कारण ई विकृति कौन कारण से आवेला, ये विषय पे जानकारी देते डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, और उनसे बात करत हमें श्री मनीष जी। आई सुनल जा।
8: नमस्कार श्रोताओं, बच्चे भगवान की दी हुई अनुपम देन है और हर कोई बच्चों को देख के खुश होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ बच्चों में जन्मजात विकृतियां भी होती हैं, और माँ बाप चिंतित भी होते हैं और उनका चाहना भी ये होता है कि जल्द से जल्द वो विकृतियाँ सही हो जाएं, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाए। तो इस बारे में आज हम से बातचीत करने के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, जो यहाँ BRD मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता हैं बाल रोग सर्जरी विभाग की, और पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएँ दे रही हैं इस क्षेत्र को। मैडम, पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में।
9: जी धन्यवाद।
8: मैडम, जो बच्चे हैं
9: जी
8: कुछ जन्मजात विकृतियाँ होती हैं अगर, तो उनका क्या समाधान है, क्या निदान है, किस तरह की विकृतियां एक तो जनरली होती हैं बच्चों में, और कौन सी विकृतियां हैं जिनका आप इलाज किया जा सकता है, कुछ ऐसी भी होंगी जिनका इलाज नहीं हो सकता है, तो कौन कौन सी विकृतियां हैं सामान्य तौर?
9: जी सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और मैं सबसे पहले ये बताना

0: चाहूंगी कि बाल सर्जरी में हम कौन कौन से बच्चों का, किस उम्र तक के बच्चों का इलाज करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि न्यू बॉर्न एज से लेकर बच्चा जब पैदा होता है उसकी उस अवस्था से लेकर के हम एडोलेसेंट ग्रुप तक यानी कि लगभग 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों का इलाज होता है बाल सर्जरी में। और रोगों को ये बेसिकली जन्मजात विकृतियां होती हैं जिन्हें कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस भी कहा जाता है। और इन्हें समझने के लिए पहले हमें इन तमाम बीमारियों को सिस्टम वाइज हम कैटेगराइज करते हैं। ये बीमारी आहार नाल के तंत्र से संबंधित है या बच्चों के पेशाब वाले रास्ते से संबंधित है या बच्चों को नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की ऐसी विकृतियां आती हैं। जैसे सपोज हम अगर आहार तंत्र की बात करें तो ये जन्मजात विकृतियां बच्चों में खाने की नली से आरंभ होकर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार कहीं पर भी हो सकती हैं। और ये तमाम विकृतियां हैं, ये बेसिकली जिसमें आंतों का ना बना होना, खाने की नली का ना बना होना, अमाशय के मुंह पर जन्मजात रुकावट होना और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मल द्वार का अनुपस्थित होना, या जो फीमेल बेबीज होती हैं उनमें मल द्वार, जो योनि द्वार होता है जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना के रास्ते ये बच्चियां स्टूल पास करती हैं बेसिकली। और अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें जैसे कि पेशाब, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जो पेशाब और पेशाब की नली से संबंधित जो सिस्टम है, इसमें पेशाब करने में दिक्कत का होना, पेशाब के रास्ते में रुकावट होना या गुर्दों में सूजन का होना, ये सारी ही जन्मजात विकृतियां हैं जो बाल सर्जरी विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पैदाइशी बच्चों के सर में पानी का इकट्ठा हो जाना, ये भी एक कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है। या नर्वस सिस्टम में जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं उसमें जन्मजात छेद का होना जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी पर जन्मजात सूजन होती है, ये सारी बीमारियां बाल सर्जरी के अंतर्गत आती हैं जिनका हम इलाज करते हैं।
1: जैसे कोई बच्चा पैदा हो
0: जी
1: तो ये जो आप विकृतियां बता रही हैं इसको तो तुरंत पता लग जाता होगा उस समय डॉक्टर को।
0: नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉन्जेनाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जन्मजात विकृतियां हैं, बहुत बार तो तुरंत ही मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट होने का मतलब लक्षण तुरंत ही समझ में आ जाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है बच्चा जब 1 महीने का हुआ 2 महीने के बाद उसके लक्षण समझ में आने लगते, वो बीमारी तो जन्म जाती है पर लक्षण स्पष्ट रूप से समझ में आने में 1-2 महीने का वो जो बीमारी है उसमें टाइम लग जाता है। तो ज्यादातर बीमारियां, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, उचित है कि इसके जो लक्षण हैं ज्यादातर बीमारियों में बच्चों के पैदा होने से लेकर के महीने भर की उम्र तक के अंदर उसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं।
1: अच्छा मैडम, एक चीज तो हुई लक्षणों की बात,
0: जी
1: जो सर्जरी है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और सर्जरी ज्यादा इन लोगों की कठिन होती है, माँ बाप भी
0: कॉन्शियस होते हैं
1: काफी
0: और
1: चिंता
0: काफी
1: में आ
0: चिंता
1: जाते
0: में
1: हैं,
0: रहते हैं। जी,
1: तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? आजकल जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, तो जो बच्चों की सर्जरी है
0: जी
1: उसमें कितनी सुगमता आ गई है पहले के मुकाबले?
0: देखिए, बहुत सारी जो जन्मजात विकृतियां हैं, जो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, अब जो एंटीनेटल अच्छे अल्ट्रासाउंड्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से बच्चे के पैदा होने के पूर्व ही उन्हें डायग्नोस कर लिया जाता है। अगर माँ किसी अच्छे सेंटर में अपना एंटीनेटल चेकअप करा रही है तो बहुत सारी बीमारियां पहले ही पता चल जाती हैं बच्चों के जन्म के पहले। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि ऐसे बच्चों का जन्म ऐसे सेंटर पर हो जहाँ फिर उन बच्चों के ऑपरेशन की, ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की पूरी सुविधा उपलब्ध हो। तो ये निर्भर करता है कि जब जब माँ गर्भवती हो तो उसी समय उसका अच्छे से सुचारू रूप से एंटीनेटल चेकअप हो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो जो फर्स्ट जो एक पीडियाट्रिशियन बच्चे को देखता है वो बच्चे को अच्छे से फॉलो करे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सर्जरी से संबंधित उन्हें समझ में आती है तो बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर पर तुरंत ही रेफर कर दिया जाए ताकि ठीक समय पर बच्चे का उपचार शुरू किया जा सके।
1: अच्छा मैडम, एक जैसे कुछ बच्चों में, ये तो अंदरूनी विकृति की बात हुई,
0: जी जी जी
1: जैसे पैर सही नहीं होते या हाथ
0: जी
1: सही से
0: जी
1: काम नहीं कर रहे हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये किस तरह की विकृति में आते हैं?
0: ये एक्चुअली इन्हें भी आप कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स ही बोलेंगे, लेकिन जिसमें किसी बेसिकली हड्डी का ना बना होना, जिसे जिसको हाइपोप्लेजिया बोल सकते हैं, एप्लेजिया बोल सकते हैं, पर्टिकुलर हड्डी का ना बना होना जिसकी वजह से जो बाजू है आपके, जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं, एक पर्टिकुलर उस दिशा में मुड़ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें सर्जरी तो का बहुत रोल तो नहीं है, लेकिन हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से बच्चों का जीवन या फ्यूचर उसे सुगमता प्रदान कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक जो काफी मीडिया में भी चर्चा में रहता है, जुड़वा
0: जी
1: बच्चों की जो समस्याएं होती हैं,
0: जी जी
1: जैसे कई अंग जुटे हुए

0: जी
1: हैं,
0: जी
1: इस तरह की कोई समस्या क्या आपने अपने
0: जी हमने बहुत
1: कैरियर
0: देखी
1: में
0: है
1: देखी, और
0: जी।
1: क्या आपने उसका
0: करियर देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर जो जुड़वा बच्चे हैं उनका जो उनके अंग हैं, क्या मेजर अंग जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या आपस में शेयर हो रहे हैं। तो ये अंदरूनी अंगों के बेसिकली शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि क्या दोनों बच्चों को बचाया जा सकता है या एक बच्चे को हमें फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है और अभी तक फिलहाल ये सर्जरी गोरखपुर में शुरू नहीं हुई।
1: अच्छा, ये तो हुआ कि बच्चे का जन्म हो गया, उसमें विकृतियां हैं,
0: जी
1: क्या
0: जी
1: कोई सावधानी बरती जा सकती है जन्म के
0: जी
1: पहले
0: बिल्कुल
1: माता के स्तर पे कि
0: जी
1: ये विकृतियां हों ही ना?
0: जी बहुत सारी विकृतियों का मूल कारण तो अभी तक स्पष्टता से पता नहीं चल पाया है, लेकिन
2: बहन साहब सुनत रही जानकारी, बच्चों में जन्मजात विकृतियां जे पे जानकारी देते रही डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, तो इनके दहलजा धन्यवाद और इनसे बतियाओ तने मनीष जी। और यही के साथ ही हमन के कार्यक्रम का समय हो रहा बा समाप्त, ते हमें दी आज्ञा। बहिन लोन नमस्ते।

घर आंगन ग्रामीण बहनें अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के विस्तार बदे सरकार कोनो कोर कसर नहीं छोड़ रहल हो। यही कड़ी में पीएम गतिशक्ति के तहत कानपुर से कबराई के बीच एगो नया 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के मंजूरी दिल गई। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहने कि ये प्रोजेक्ट कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का एगो बढ़न हिस्सा हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अध्यक्षता में काल भेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकी में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के लगे 118 किलोमीटर लम्हर एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण के मंजूरी मिलल। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 के अधिसूचित कर दिले हो। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई बा। नया योजना 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का जगह ले।
1: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकन में रहे वाले लोगिनों के अब अपने घरे के लगे नया जमाना का रेडियोलॉजी आ इमेजिंग सेवा का सुविधा मिली। एकरे बदे प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री निधि के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर दस्तखत कैले हो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित कुमार घोष बतौलें कि एमओयू के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन, 1.5 टेस्ला MRI मशीन और डिजिटल मेमोग्राफी टोमोसिंथेसिस DBT मशीनिन के आपूर्ति, स्थापना आ संचालन कैल जाए। केंद्र सरकार भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर के शुरुआत कैले के मामला में मेटा के नोटिस दिले हवे।

0: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अयोध्या के रोनाही थाना क्षेत्र में मुबारकगंज के लगे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आज सवेरे एगो कार और ट्रक के टक्कर में एक परिवार के 3 जने की मौत हो गई, वहीं 4 जने और घायल हुए। ये दुर्घटना ओ समय भइल जब लखनऊ से सिद्धार्थनगर जा रहल कार पाछे से एगो ट्रक में लड़ गइल। राज्य में मानसून के अइले से लोगिन के भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलल बा। एगो रिपोर्ट।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग प्रदेश में अजुओ कहीं कहीं भारी बरखा, बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बियार चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हो। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से शुरू हो गई। ये परीक्षा आवे वाला 4 जुलाई ले प्रदेश के 60 जिलन में बनावल गई 955 परीक्षा केंद्रन पर आयोजित कैल जा रहा हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में पीएम गतिशक्ति पहल के तहत कानपुर से कबराई के बीच एक नए 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कानपुर भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी।
3: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अब अपने घर के पास आधुनिक रेडियोलॉजी और इमेजिंग सेवाओं की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री निधि के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि इस MOU के अनुसार ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन, 1.5 टेस्ला MRI मशीन और डिजिटल मेमोग्राफी टोमोसिंथेसिस DBT मशीनों की आपूर्ति, स्थापना तथा संचालन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम

0: फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अयोध्या के रोनाही थाना क्षेत्र में मुबारकगंज के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आज सुबह एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब लखनऊ से सिद्धार्थनगर जा रही कार पीछे से एक ट्रक में टकरा गई। राज्य में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से शुरू हो गई। यह परीक्षा आगामी 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: पंचों जय जवान जय किसान। भाई देखा नारा लगल और एक साथ बैठ के शुरुआत भइल। पंच भाई पहले में बाजा वगैरह खोल के बैठ जा रहे, और ये वो हमें रहना कि भाई आज का सुने के मिली। तो सबसे पहले तो पंच भाई उनको बता दिया जाए कि आज का जानकारी मिली। मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाए यह बारे में जानकारी मिली विद्यापति पाठक से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हमन के चर्चा कही जाई। अब पंच भाई उनका पूरा मन मनसान हुई, आल्हा सुनिए। सबसे पहले हमन के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अगर बात कही जाए तो

0: एगो ऐसन योजना हवे जौने के तहत किसान भाई लोग जौन फसल खेते में लगा रहल बाटे, कौनो भी दैवी आपदा के वजह से, बीमारी या कीड़ा मकोड़ा के वजह से अगर कौनो नुकसान हो गई तो ओकर क्षतिपूर्ति कैले के प्रावधान यह योजना में बा। जैसे अक्सर होला कि पंच भाई कौनो भी फसल लगौलें, आगे चल के ओलावृष्टि भइल या जौन बा अतिवृष्टि भइल या आग लग गई या और कोनो बात हो गई, फसल को नुकसान पहुँचल या मान ला कीड़ा जौन बा फसल का नुकसान पहुँचा दल, तो पहले ही होत रहल कि जौन बा ओकर भरपाई नहीं हो पात रहल। लेकिन यह योजना के तहत यह बात के व्यवस्था कैल गई बा कि पंच भाई लोगन के भरपाई हो जाए, लेकिन जेकर बीमा रही वही के,
1: अच्छा भैया,
0: जे फसल बीमा करौले रही वही के जौन बा वही। जौन खरीफ के सीजन चल रहल बा, खरीफ में हमन के जौन भी फसल लगा रहल बानी ओकरे बीमा के आखिरी तिथि 31 जुलाई है।
1: अच्छा भैया,
0: ओकरे पहले जे भी बीमा करा ली ओकर फसल सुरक्षित हो जाए। कई बार जौन अंतिम तिथि बा के बढ़ावल भी जाला, लेकिन फिलहाल अभिन जौन बा 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित बा। हर हालत में पंच भाई उसे पहले अगर बीमा करवा ले जौन भी फसल लगौले बाटे। हर जिला में कुछ अधिसूचित फसल बाटी, जैसे मान ला कि खरीफ में बहुत सारी फसल किसान भाई लगौले बाटे, लेकिन सब्जी फसल के बीमा यह योजना में जौन बा आच्छादित नहीं बा। कुछ फसल के जौन बा बीमा आच्छादित बा, अपने जिला के जौन कृषि विभाग का लोग बाटे उनसे अगर पता करी हैं तो यह बात का जानकारी हो जाए कि कौन कौन फसल के बीमा हो सकेला। वैसे जौन मुख्य फसल हो रहे जैसे धान हो, एक बीमा जरूर हो जाए,
1: हाँ
0: मुख्य
1: भैया,
0: फसल एमन जरूर शामिल रहला, बाकी भी दूसर फसल शामिल रहला। कुछ पंच भाई जौन बा व्यावसायिक जौन बा फसल लगा रहल बाटे तो ओकर जौन बीमा बा वो बीमा हो जाला। जौन बीमा के प्रीमियम राशि बा बड़ा कम होकेला, खरीफ के फसल बदे जेके भी बीमा कराओ का 2%, मतलब अगर 100 रुपया बीमा राशि हवे तो ओकर 2% जौन बा वो
1: यानी
0: जमा
1: कि
0: करे
1: ओकर
0: बा।
1: 2 रुपया जन
0: हाँ,
1: बा।
0: जौन क्षतिपूर्ति कोई 100 रुपया अगर मिले के बा तो 2% होके जमा, जितना का बीमा होके बा ओकर 2% जमा करे के पड़ी।
1: अच्छा,
0: और व्यावसायिक और बागवानी वाली फसल अगर बा तो ओकरे बदे प्रीमियम 5% जमा करे के पड़ी। तो अगर प्रीमियम का बात कर जाए तो प्रीमियम कुछ नहीं बा, बहुत मामूली प्रीमियम बा। जो भी किसान भाई क्रेडिट कार्ड धारक बा, मतलब बैंक से जेकर भी क्रेडिट कार्ड जौन बा मिलल बा ओकर बीमा वो बैंक अपने आप कर देला, किसान भाई लोग कोनो प्रयास करे के जरूरत नहीं बा। लेकिन जे जौन बा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं ले ले बा ओके जाके बीमा करावे के पड़ी। बीमा करौले खातिन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक के छाया प्रति, खसरा खतौनी के छाया प्रति के जरूरत पड़ी। जे किसान भाई पट्टा पर खेती कर रहल बा तो पट्टा के स्थिति में मालिक से जौन उनका अनुबंध भइल बा खेती खातिन ओकर छाया प्रति लगावे पड़ी कागज के। कौनो भी बैंक में जाके या कृषि सहकारी समिति बा वहाँ पर जाके या कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र जौन के कहल जाला, कृषि विभाग या गांव के जौन लेखपाल बाटे उनसे भी मिल के फसल के बीमा अपन पंच भाई करवा सकेला। एकरे अलावा जौन कृषि विभाग के वेबसाइट बा वह वेबसाइट पर जाके किसान भाई यह योजना के बारे में पूरहर जानकारी ले सकेला। कोनो स्तर पे कहीं भी अगर कोनो समस्या आ रहल बा तो ओकरे खातिर केंद्र सरकार एगो हेल्पलाइन भी जारी कैले बा। हेल्पलाइन का नंबर अपन किसान भाई नोट करें, 1-44-47-14-44-7 ई हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोनो दिक्कत आवता तो पर जाके संपर्क कर सकें। एक चीज़ और कहेगा बा कि फसल के अगर नुकसान भेल तो देर कैला के जरूरत नहीं बा, तुरंत जौने बैंक से बीमा भइल बा वह बैंक में संपर्क करें, उनके सूचना दें और बैंक वाला जौन जौन भी कंपनी बीमा कैले बा ओकरे संज्ञान में लाई, तो जल्दी से जल्दी जौन बा वो कंपनी वाला ओकर जौन बा सर्वे कैके जौन ओकर क्षतिपूर्ति बा दियाई। अगर देर करिए तो जौन बा क्षतिपूर्ति मिलने में देर होई। भाई देखा हमन के बात कही आगे भी चलत रही, लेकिन एक चीज़ हमन के चर्चा कैल जाला कि जौन माटी बा माटी में उतना ताकत नहीं रह गल बा जितना कि पहले रह। माटी में कई गो ऐसन पोषक तत्व बाटे जौने के काफ़ी कमी हो गई बा और फसल उत्पादन में उनकर रहल काफ़ी जरूरी बा। ऐसने एगो पोषक तत्व है कार्बन,

0: कार्बन माटी में काहे के होखल जरूरी बा, एकर उत्पादकता में का उपयोग बा, माटी के सेहत में एकर का योगदान बा, आज यही कुल विषय पर किसान भाई को जानकारी सुने विद्यापति पाठक जी से। इनसे बात कही करते भैया ओम प्रकाश त्रिपाठी।
1: विद्यापति पाठक जी, आप पूर्व सहायक निदेशक कृषि विभाग गोरखपुर हैं। पाठक जी, सबसे पहले आपके अपने बैठकी में स्वागत बा। अपन किसान भाई लोग जब खेती करे के बारे में सोचेला तब सबसे पहले माटी के ऊपर उनका ध्यान जाला, और माटी के बारे में सोचला पे पता चलेला कि पंच भाई लोग कई तरह के उर्वरक और कंपोस्ट वाली खाद या और कुछ छोड़ के जौन माटी के स्वास्थ्य भाव के बढ़ावल चाहेला, लेकिन कुछ चीज ऐसा होले जौन की माटी में न रहला से अपने उत्पादन पर प्रभाव पड़ेला। तो माटी स्वस्थ कैसे रहे, माटी स्वस्थ वा कि नहीं, ये कैसे जानकारी पंच भाई लोग करें?
2: आपकी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है, इसके लिए ये जरूरी है कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व अगर हो तो हम उसको स्वस्थ मानेंगे। सबसे पहले यदि भूमि का पीएच आपका 6.5 से 8.5 के बीच में है तो समझिए कि आपकी मिट्टी सामान्य रूप से स्वस्थ है, न वो ऊसर है न वो अम्लीय है। अब अगर उसका गठन, गठन का मतलब कि उसमें बालू की मात्रा कितनी है, उसमें अन्य आपकी चिकनी मिट्टी कितनी है, तो विशेष कर से जो बलुई से जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो बिल्कुल स्वस्थ भूमि मानी जाती है। उसमें फसल बढ़िया होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी।
1: पंच भाई लोग बलुई दोमट कहे,
2: हाँ, जो के बलुई दोमट से लेकर के दोमट, बलुई दोमट या चिकनी दोमट, अगर यह अगर इस टाइप की मिट्टी है तो अच्छा। समझिए कि आपकी मिट्टी आपके फसल के लिए अति उत्तम है। अब उसमें एक जीवांश कार्बन होता है,
1: अच्छा।
2: अगर जीवांश कार्बन मिट्टी के अंदर 0.8% से अधिक है तो आपकी मिट्टी पूर्ण रूपेण स्वस्थ मानी जाती है।
1: अच्छा।
2: अब इसी प्रकार उसमें मुख्य तत्व जैसे वैसे तत्व तो 18 तत्व होते हैं जो कि जमीन के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें फास्फेट जो पहले से अगर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है, पोटास 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ मानी जाएगी।
1: अब आप बताइए है कि हमें जो सूक्ष्म जीवांश व कार्बन वो होवे के चाहिए,
2: हाँ।
1: तो सबसे बड़ी बात तो यह भाई कि पहचानल कैसे जा
2: जी, जी।
1: कि वो हमें कार्बन बा कि नहीं बा, एक खातिर पंच भाई लोग कौन विधि अपना?
2: देखे, बहुत ही सामान्य विधि हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि वो जब अपने खेत में जाएं तो सबसे पहले मिट्टी को हाथ में ले लें, और मिट्टी को हाथ में लेने पर अगर वो मिट्टी भुरभुरी है,
1: अच्छा,
2: और हाथ में लेने के बाद वो चिपकती नहीं है एवं कंकड़ हाथ में चुभते नहीं है, तो समझिए कि आपकी मिट्टी में ह्यूमस है, आपकी मिट्टी में कार्बन मौजूद है।
1: अच्छा।
2: अगर हम मिट्टी को अपने भूमि को देखेंगे तो भूमि उनकी काले भूरे रंग की दिखाई देगी, और अगर ऊपर पानी डाला जाएगा तो बहुत ही कम देर में वो पानी सोख लेगा, यानी पानी अवशोषित हो जाएगा।
1: अच्छा।
2: तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मिट्टी सही है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें जीवांश कार्बन उपलब्ध है, और वो हमारी फसल के लिए अति उत्तम है।
1: अच्छा, ये कार्बन जो आप बतैली है
2: जी जी,
1: अगर मान लिया जा कि पंच भाई लोग गए पहचान के लें, पहचान का तरीका आप बता दहली कि अगर मिट्टी कठोर नहीं बा और मिट्टी जोन बा मुलायम बा, हाथे में चपकत नहीं बा, तो कि मान के चले कि भाई इसमें कार्बन जोन बा, और अगर कठोर बा तो भाई कार्बन का कमी बा
2: जी जी,
1: और अगर वो कार्बन नहीं बा
2: जी जी जी,
1: तो उससे अपने उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा?
2: बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मिट्टी के अंदर कार्बन नहीं है, जीवांश कार्बन नहीं है, तो सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। सबसे पहले तो असर पड़ता है कि हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा उसमें कम मिलेगी।
1: अच्छा।
2: अगर उसमें कार्बन की मात्रा कम है तो हमारे जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे मॉलिब्डेनम, बोरान, तांबा, मैग्नीज, लोहा, जिंक, सल्फर, ये जो तमाम किस्म के हमारे सूक्ष्म तत्व हैं वो उसकी मात्रा कम मिलेगी। लाभदायक जो हमारे जीवाणु है उसकी मात्रा कम मिलेगी। हमारी फसल की, हमारी जो मिट्टी उतनी भुरभुरी नहीं रहेगी, पानी सोखने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी, तो यह सीधा उत्पादन पर असर डालता है। इसीलिए जरूरी है कि जमीन में 0.8% से ज्यादा कार्बन हो, तभी हमारे फसल के लिए उपयुक्त होगा।
1: अच्छा, आप बताइए कि इतना कार्बन चाहिए, तो अगर ये कार्बन का कमी बा
2: जी जी,
1: तो का पंच भाई कोनो ऐसा विधि बा जोने से वो के पूरा कर सकेला?
2: जी जी, बहुत ही आवश्यक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखें, आजकल का जो प्रवेश चल रहा है वो ज्यादातर किसान भाइयों के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि रासायनिक खाद ज्यादा से ज्यादा खेतों में डाला जाए, और रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग करके किसान अपने खेत की भौतिक दशा बिल्कुल निम्न स्तर से बनाता हुआ चला जा रहा है।

0: परिवेश भी हमारा बदलता गया। जैसे पहले हरी खाद बोने का प्रचलन था, नीम की खली हम लोग डालते थे, देहातों में तेल निकालने के बाद से जो उसका अवशेष बनता है उसको हम लोग खेत में डालते थे। हमारे गांव पर या घर पर पशुओं के रखने का प्रचलन ज्यादा था, क्योंकि हल से जुताई होती थी तो गोबर की मात्रा ज्यादा मिलती थी, तो ज्यादातर किसान भाइयों के पास गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में हो जाता था। आज के परिवेश में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है और ज्यादातर यंत्रीकरण की व्यवस्था होने के कारण जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कुप्रभाव हमारे फसल के ऊपर पड़ रहा है।
1: मतलब जो रासायनिक खाद खेती,
0: हाँ, रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इससे हमारे खेत की दशा बिगड़ती जा रही है। अब हम ये सुझाव देंगे कि कैसे इसको, कैसे कार्बन की मात्रा बढ़ावें, इसके लिए हम किसान भाइयों को सबसे पहले सुझाव देंगे कि वो जीवांश खाद का प्रयोग करें। जीवांश खाद का मतलब कि कंपोस्ट खाद डालें, उसमें गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट बनावें, जो बहुत ही आसान है। उनके घर पर जो आपके जड़, पत्ती, तना, फल आदि का जो अवशेष बचता है उसको इकट्ठा करके उसको थोड़ा सा सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के उसको सड़ा लें, और सड़ने के बाद से अगर उसको खेत में डाला जाए तो आसानी से हमारे खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा इसका हम विधि एक वैज्ञानिक तरीके से भी बता रहे हैं। मान लें कि अगर किसान भाई को कम्पोस्ट खाद बनाना है तो कम्पोस्ट खाद में 100 किलोग्राम गोबर ले लीजिए, 15 क्विंटल फसल अवशेष का ले लीजिए, जो कि फसल के तमाम अवशेष बचते हैं,
1: धान काटल गई ओकर डंठल
0: जी
1: सब लेके बनावल,
0: हाँ, और उसके बाद से कुछ मिट्टी मिला लीजिए और मिला करके इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये 90 दिन में ये खाद आपकी तैयार हो जाएगी, लगभग 30 क्विंटल की होगी। अच्छा। और आराम से ये तैयार हो जाएगी और इसको होने के बाद से आप, अच्छा, इसका जो गड्ढा बनाएंगे 2 मीटर × 2 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बनता है तो आसानी रहता है। नीचे हम कुछ छेद कर देते हैं, जैसे एक तो जमीन से ऊंचा गड्ढा होना चाहिए, जो हम जहां हम बनाएंगे कंपोस्ट खाद वो जमीन के बराबर न हो, जमीन से थोड़ा ऊंचा हो। गड्ढे की लंबाई 2 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1 मीटर हो। नीचे उसके सतह पर हम कुछ छेद बना देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर लकड़ी का अगर तख्ता अगर नीचे बनता है कोई, अगर हम डब्बा टाइप की चीज में अगर हम खाद तैयार कर रहे हैं तो नीचे कम से कम 10 से 15 छेद कर दें, जिससे कि नीचे से हवा का आदान प्रदान होता रहे। इस हिसाब से अगर उस कंपोस्ट को लेकर के हम सड़ाते हैं तो वो 90 दिन में हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है और वो आराम से हम खेत में डाल करके अपने खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और जिससे कि हमारे फसल के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब ये तो हो गया कम्पोस्ट खाद का, ऐसे ही वर्मी कम्पोस्ट भी बनाया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट में केचुए का प्रयोग किया जाता है। अब केचुए उसमें 2-3 किस्म के केचुए होते हैं, वैसे ज्यादातर इधर इसेनिया फुडिडा नाम का एक होता है केचुआ, जो कि लाल रंग का होता है। इसमें भी हम करते ये हैं कि स्थान का जो चुनाव करते हैं, किसी पेड़ के नीचे किसी छायेदार स्थान पर वो स्थान का चुनाव करते हैं और कुछ ऊंचा स्थान होना चाहिए। इसमें सबसे नीचे 11 सेंटीमीटर ईंट या पत्थर की परत बिछा देते हैं, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर मोरंग या बालू की तह डालते हैं, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम आधा सड़ा गोबर की खाद लेके उसको छिड़क देते हैं, और उसके बाद लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर घरेलू कचरा जो इसके ऊपर तमाम जो डंठल उंठल बचा रहता है उसको डालते हुए चले जाते हैं। ये स्थिति करने के बाद ये खाद हमारी तैयार हो जाती है, और इसके सड़ने के बाद अगर इसका प्रयोग अगर किया जाता है तो वो भी हमारे खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसी के साथ साथ प्रेसमेट खाद भी बनती है। प्रेसमेट जो कि गन्ने का जो अपशिष्ट होता है या शीरा या प्रेसमेट, ये भी जो है भूमि सुधारक के रूप में इसका प्रयोग करके अगर खेत में डालें तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और आराम से कार्बन की मात्रा 0.8% से ज्यादा हमारी जमीन में हो जाएगी और कोई भी फसल भोएंगे तो वो लाभदायक हो जाएगा। इसी क्रम में मलमूत्र की खाद भी, जैसे जहां जहां पशु बांधे जाते हैं, पशु के नीचे जो किसान भाई पुआल वाल बिछा देते हैं या जो जो गीला होता है उनके मित्र से, अगर उस अवशेष को लेकर के कहीं रख करके सड़ा लिया जाए और सड़ने के बाद अगर उसको खेत में प्रयोग किया जाए तो भी वो काफी फायदेमंद होता है, हमारी ह्यूमस की मात्रा उसमें भी ज्यादा हो जाती है।
1: भाई लोग ठंडी का सीजन जब आवे तो ले जाके पुआल जो डेली अपने पशुशाला में बिछावत रहा है और उस साड़ी के यह ठंडी के सीजन भर में खाद बन जाता रहा।
0: जी, जी,
1: अब फिर ले जाके हर पंच भाई लोग लगे घूर रहत रहा जौने की खाद का गड्ढा कहा जाला, तो वह घूरे में ले जाके अपन जो अवशिष्ट आलू के डालत रहे फिर और वही में सड़ के वो खाद बन जाता है, तो बहुतायत मात्रा में खाद तैयार हो जाता रहा और ये जो रासायनिक उर्वरक बा एकर प्रयोग बहुत कम करे के पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया

0: ताकि पंच भाई लोग इतना खाद तैयार नहीं कर पावत हवे और खेती लम्हर बा, का कुछ ऐसा भी व्यवस्था बा जोने के खरीद के ला के और खेते में डाल जा सकाला जोने से कि कार्बन की मात्रा बढ़ावल जा सके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आसान उपाय तो हम यह कहेंगे जो आपने कहा है कि अगर कम पैसे में अगर जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ानी हो तो जब हमारा खेत खाली होता है, खाली हुए खेत में अगर हमारे किसान भाई केवल हरी खाद का प्रयोग कर दें, अगर उसमें ढैंचा बो दें, सनई बो दें, उर्द बो दें, मूंग बो दें, लुबिया बो दें या दलहनी फसलें जो होती हैं उसके जो अवशेष भाग हो अगर उसके हरा वाला पोर्शन अगर उसको पलट दिया जाए तो हरी खाद लेकर के बीच का जो खाली पोर्शन जो खाली समय है जो हमारे किसान भाई प्रति रखते हैं, प्रति न रख करके उसमें हरी खाद के रूप में उसको इस्तेमाल करके सनई ढैंचा बो करके उसकी पलटाई कर दें तो अच्छा खासा ह्यूमस हो जाएगा हमारी जमीन में, अच्छा खासा कार्बन हो जाएगा, कम लागत में उनको तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट, तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो भी आवश्यक तत्व तो है उस जमीन में उनको मिल जाएगा, जमीन की भौतिक दशा भी सही हो जाएगी, उसकी संरचना भी सही हो जाएगी, पानी और शोषण की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जो बहुत ही सस्ता है, बहुत आसान है। या खली की खाद डालना जो हम छोड़ चुके हैं, आज मैं समझता हूं कि प्रत्येक किसान भाई के घर में तमाम जो है तिलहन की व्यवस्था होती होगी और वो तेल निकालने के बाद से खली हम जो दे देते हैं दुकानों पर, बेहतर है कि अगर उस खली का प्रयोग हम खाद के रूप में अपने जमीन में कर रहे हैं तो भी ह्यूमस की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत ही आसान तरीका है।
0: श्री विद्यापति पाठक जी, आप अपने बीच में लिए इतना निम्न जानकारी अपने पंच भाई लोगों के दिल के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: हाँ भाई, देखा है संदेश से पहले जानकारी अपन पंच भाई सुन लें। अब कुछ मन मनसाइन होके तब देर करे के जरूरत ना बा। रमेश चंद और उनका संगतिया लोग बैठल बाटे, ये जोन बा अलहित लोग बाटे, पंच भाई अपन आला सुना है।

0: हाँ भैया, देखा रमेश चंद और उनका संगतिया लोग जौन भाई आला सुनाओत रहा, उम्मीद बा कि अपन किसान भाई उनका पूरा हर मन मनसाइन भैल होई। यही के साथे हमन के चलले का जून भैल चलल जाए।
1: पंचों
0: पंचों
1: जय
0: जय
1: जवान
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

कृषक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ सूचनाएं हैं। राजभर रोनियार, ग्राम देवघट्टी, पोस्ट देवघट्टी, थाना बरगदवा, तहसील नौतनवा से और जनपद महाराजगंज से अपनी पत्नी मनीषा साहनी के खोने की सूचना हमें देते हैं। मनीषा साहनी की उम्र है 18 वर्ष, लंबाई 5 फुट 5 इंच है, कद इनका छोटा ही है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, ये पीले रंग की साड़ी और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। मनीषा साहनी दिनांक 29 अप्रैल से दिन मंगलवार की रात्रि 8 बजे से बिना बताए घर से कहीं निकल गई हैं और तब से अभी तक घर नहीं आई हैं। इनके बारे में अगर कोई सूचना आपके पास है तो कृपया इस नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 8423602741। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8423602741।

अवधेश शर्मा, जसवल भरवलिया, थाना बखीरा, जनपद संत कबीर नगर से अपनी पुत्री आंचल के खोने की सूचना हमें देते हैं। आंचल की उम्र है 21 वर्ष। आंचल के बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास है तो कृपया पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को सूचित करें। अलादीन मालीपुरवा, थाना बखीरा, जनपद संत कबीर नगर से अपनी पत्नी साविदा के खोने की सूचना हमें देते हैं। साविदा की उम्र 26 वर्ष है। इनके बारे में अगर कोई सूचना आपके पास हो तो पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को सूचित करें।

0: मित्र वृंदा मिश्रा के स्वर में अभी आप लोकगीत सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीतों का हमारा आज का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सायेंद्र नारायण सिंह से भोजपुरी काव्य पाठ।
1: पृथ्वी बची तो सब बची, ई है हमनी का बचावे के बा। आई से का हमनी का फायदा बा देखी। प्यार दुलार मिले पुचकार, आहार बिहार मिले पृथ्वी से, हर जीव के जीवन बूटी है, सब एड़ी से चोटी चढ़े पृथ्वी से, बट खाड़ पहाड़ भराई जहाँ, सब का बावे आड़ यही पृथ्वी से, झरना झील सागर आहर बा, कुछ बाहर बावे कहाँ पृथ्वी से, बुद्धि ज्ञान ही अमृत खान है, मेहमान सभे है यही पृथ्वी से, बन मोर चकोर के सोर जहाँ, मकरंद सुगंध मिले पृथ्वी से, खान खदान सजी धन धाम, मिलल वरदान बवे पृथ्वी से, ज्ञान के भान शीतल चान, के मान बढ़ेला यही पृथ्वी से, अरवा उसिना टटका बसिया, हर बीजन व्यंजन बा पृथ्वी से, खेत बधार आधार जीव के, चीरल जाता छाती पृथ्वी के, सगरी सही बाड़ी कला सधले, केतना मताबा माई पृथ्वी के, कोड़ी के खोनी के काटी के छाटी के, पाटल जाता यही पृथ्वी के, पेड़ काटल पाटल जाता नदी, उजराता सिंगार यही पृथ्वी के, सगरी सुख संपत्ति सौंपी सदा, बाड़ी मौन सीख ना इहे पृथ्वी से, केतना बावे छोह आ मोह भरल, केहू था ही का दाही बाके पृथ्वी से, सब पाके धधा के आघा के कहें, देही जारल।

के बगिया मोह के सतरंगी सुहाग सजे पृथ्वी से ऋतुराज सजा के सजे ले जहाँ बड़की बा सिंगारी भला पृथ्वी से अनुराग के राग उमंग के रंग सतसंग

0: से सभे आपन बा केहू आपन ना अपनापन के पन बा पृथ्वी से तन से मन से जन से बन से कण से कैलास बावे पृथ्वी से।
1: दूसरा रचना के मथेला बा बदरा, सब लोग आस लगौले बा एक हकबुन खातिर लोग तरसत हाई।
2: बदरा यौवल बजर बेहाया नई खे लाजो।

तरस वाया ना बदरा औल बजर बहाया नहीं खे लाजो हाया ना अंग अंग पसिजे तन मन भारी अंग अंग पसिजे

अव्वल बजर बहाया नइखे लाजो हाया ना। किसान आस लगौले बने कि बड़ी शीत खूब झमाझम पानी धरती पेनीती चुनरी धानी कुहुकित काया न बदरा अव्वल बजर बहाया नइखे लाजो हाया ना। मन मऊराइल

कौन दर्जी कौन दर्जी बनाई ना कफन में बगली, कौन दर्जी बनाई ना कफन में बगली, अइले हाथ रहे तोर खाली जइबे डणवो लोग निकाली, तनिको देर न लगी करी है घर से बहरी हाली हाली, ते तो झूठ बहसावतार मन पगली, ते तो झूठ बहसावतार मन पगली, कोनो दर्जी बनाई ना कफन में बगली, कोनो दर्जी बनाई ना कफन में बगली।

महल अटारी छन भर बिलमल नाय सवारी जहवा सगरी जिंदगी बीतल तहवा सपना भइल सोहारी बगिया फरल फूलल।

में बगली बिलटी राज पाठ घर बारी केहू पगड़ी नायक वारी। जब प्राण घट से निकल जी तो केहू धरे वाला ना मिली। बिलटी राज पाठ घर बारी केहू पकड़ी नायक वारी। जे के जिंदगी भर तू ढोलो होइबू ओकरे खातिर भारी। मटिहनी राशि हो जाई तोहरो चौथा पान पगली चौथा पान पगली। काहे घूम के बिटोर तार धन पगली। कर से बस्तर सब उतराई देहिया पांच तत्व बन जाई। कर से बस्तर सब उतराई देहिया पांच तत्व बन जाई। पोतल किसिम किसिम के अपन जरी के धुआं में उड़ी आई। अबो से चेत सिवानी छोड़ के कल छल पगली।

0: दर्जी बनाई ना कफन में बगली, काहे घूम के बिटोर तार धान पगली, आर धान पगली, कौन दर्जी बनाई ना कफन में बगली, कौन दर्जी बनाई ना कफन में बगली।
1: अभी आप सुन रहे थे सायेंद्र नारायण सिंह से इनका भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ आज का देश हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम।

आमी ए बार मामा बोले डाकी आमी आमर डाके डाक सोने ना कौन साधने तो माए पावो या मैं बोलो ना कौन साधने तो माए पावो या मैं बोलो ना।

अभी आप बांग्ला लोकगीत सुन रहे थे हमारे आज के प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरि ओम मिश्रा की वार्ता, बढ़ते तनाव घटते खुशियां। अशोक खोसला के गाए गीत और गजल आप सुनेंगे हमारे आज के सुगम संगीत के प्रोग्राम में रात्रि 8:15 पर। रात्रि 10 बजे प्रादेशिक लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे दूसरे सेमीफाइनल महिला क्रिकेट मैच, इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से।

एक बार और हम आपको याद दिला दें, इंग्लैंड महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच आज रात्रि 10:30 से हम आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से। समय याद रखिएगा आज रात्रि 10:30 पर। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है, वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर काफी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी रामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी रामजी योजना में केंद्र ने जो

0: अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
2: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
3: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
4: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मानसून के आगमन

0: से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: मीडियम वेव 400।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। इस कार्यक्रम में आज हम आपको पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस गीत को आवाज़ दिया है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है कुमार ने और इसे संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने। साथियों, ये गीत सन 2012 में फिल्म के रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दिया था और आज भी ये युवाओं के दिल की धड़कन के तर्ज पर सुना जा सकता है। इस गीत की धुन को विशाल शेखर ने इतना ज़बरदस्त बनाया है कि ये देशी और पॉप का मिक्सचर बन लोगों को थिरकने पर मजबूर

नए तराने, इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं जन्नत 2 फिल्म का गीत। ये बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। इस गीत को आवाज़ दिया है हर दिल अजीज गायक अरिजीत सिंह ने। गीत की रचना की है सईद कादरी ने और गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। तू ही मेरा, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरा सुकून। सईद कादरी साहब ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि एक एक शब्द को चुन चुन कर इस गीत की माला को उन्होंने पिरोया है। और इस गीत माला को प्रीतम के संगीत ने और भी खूबसूरत और कर्णप्रिय बना दिया है।

साथियों, आइए अब सुनते हैं जोधा अकबर फिल्म से एक गीत जो शाही दर्द से भरा गीत है। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं एआर रहमान। इस गीत को जावेद अख्तर साहब ने बड़े रूहानी अंदाज में लिखा है। मुगल दौर की उर्दू का इस्तेमाल किया है और हर लफ्ज ताजमहल जैसा लगता है और जो प्यार है वो शाही अंदाज में है। धुन धीमी है पर रूह को भीतर तक छू जाती है। गीत में शहनाई और सारंगी का तालमेल ऐसा है जैसे सुनकर राजस्थान के किले और दृश्य आंखों के सामने देखने लगते हैं। इस गीत का दृश्य भी थोड़ा आपको बताते चले हम। जब जोधा और अकबर एक दूसरे से इश्क करते हैं लेकिन उसे बयां नहीं कर पाते, इसलिए इस गीत में दर्द ज्यादा और इजहार कम है।

नए तराने, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आई हेट लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत आवाज़ शफकत अमानत अली का है, गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। श्रोताओं, इस गीत की खासियत है, इस गीत की मधुरता, इसमें छिपा दर्द और यादें। इस गीत में तड़प भी है और बेबसी भी। आप सुनिए इस गीत को और महसूस कीजिए इस गीत के भीतर छिपे दर्द को।

नए तराने। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अब सुनिए इक्का और श्वेता पंडित के स्वर में ये गीत। गीत विशाल ददलानी का है और संगीत सलमान खान और सोहेल खान का है। इस गीत की विशेषता है इक्का का रैप पार्ट, बिल्कुल उल्टे मोड का गीत इसे कहा जा सकता है। इस गीत में सलमान खान के संगीत सेंस को भी हम देख सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गाना प्यार के रिस्क को सेलिब्रेट करता है, रोता नहीं है,

नए तराने। इस प्रोग्राम में अगला गीत हमने लिया है इशक जादे से। आवाज़ें निखिल पॉल जॉर्ज की हैं और इनके साथ शालमली खोलगड़े की भी आवाज़ है। गीत कुम्मी ने लिखा है और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत का संगीत आपको कुछ अलग सा प्रतीत होगा, लड़ते झगड़ते और फिर नज़दीक आते। इस भाव को गीत में उकेरा गया है। ये गाना उन लोगों के लिए है जो कुछ खुद नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं।

0: नए तराने, ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे नूतन मिश्रा के साथ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर हरिओम मिश्रा की वार्ता, बढ़ते तनाव घटते खुशियां।
1: मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और अंतिम लक्ष्य के संबंध में विश्व इतिहास में सदैव ही दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि इस विश्व में सब कुछ क्षणभंगुर और नश्वर है, अतः इसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है। विश्व को मिथ्या मानने वाली इस विचारधारा को हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा पाई जाती है वो भौतिकवाद से संबंधित है और इस विश्व को ही सत्य मानती है एवं जो कुछ भी संसाधन या सामग्री उपलब्ध है उसके सर्वोत्तम भोग पर बल देती है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में इन दोनों ही परस्पर विरोधी विचारधाराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में एक ओर धर्म और मोक्ष को स्थान दिया गया तो दूसरी ओर इस जगत के संचालन के लिए अर्थ एवं काम को भी वरीयता दी गई। साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास से सामाजिक विकास की ओर बढ़ने के लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कारों का समावेश किया गया। भारतीय समाज की पूरी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की सभी अनिवार्य आवश्यकताएँ तनाव मुक्त वातावरण में पूर्ण हो जाएँ और यदि जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आएं, तो व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस, नातेदार इत्यादि के संपर्क से ही इन प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो जाए, क्योंकि समाज की संरचना में प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण इत्यादि आधार के रूप में स्थापित थे। परंतु पिछले कुछ दशकों या वास्तविक रूप से कहें तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद पश्चिमीकरण के रूप में एक नवीन विचारधारा का भारत में प्रसार होना प्रारंभ हुआ, जिसने भौतिकवाद को खुलेआम प्रश्रय दिया और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने भारतीय समाज को अपने आगोश में ले लिया। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप देश ने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की, परंतु साथ ही भौतिक प्रगति की इस आंधी ने प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण, समता, सामूहिकता जैसे आधारभूत तत्वों को धीरे धीरे खत्म कर दिया और इनके स्थान पर व्यक्तिवाद एवं स्वार्थ को प्रश्रय दिया, जिसके चलते आज व्यक्ति धीरे धीरे मशीन के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है एवं समाज में चारों ओर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि भौतिक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति अपने लिए भी खुशी के कुछ पल नहीं ढूंढ पाता। आज व्यक्ति के जीवन चक्र की सभी प्रमुख अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था तनाव एवं द्वंद्व से ग्रस्त हैं।

उदाहरण के लिए यदि बाल्यावस्था को लें तो जन्म के पश्चात लगभग 6 वर्ष तक बालक तनाव मुक्त जीवन जीता था। संयुक्त परिवार के बीच उसका आदर्श पालन पोषण एवं समाजीकरण होता था। मित्र मंडली एवं पड़ोस का उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था, परंतु अब धीरे धीरे इन चीज़ों से वह दूर होता जा रहा है, क्योंकि अब परिवार पति पत्नी और बच्चों तक सिमटता जा रहा है। भौतिकता की चमक दमक ने पति पत्नी दोनों को कमाऊ बना दिया है। परिणामतः जन्म के पश्चात कुछ समय तक बच्चे को आया के संरक्षण में और फिर डे केयर होम में छोड़ा जाने लगा है। इसके पश्चात ज्यों ही वह अपने पैरों पर खड़ा होना प्रारंभ करता है, उसे ज्ञान की खोज में विद्यालय में छोड़ दिया जाता है। अब तो 3-3 साल तक के बच्चों का विद्यालय जाना आम बात हो गया है और इन विद्यालयों में दाखिले के समय बच्चे और उनके अभिभावकों का इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है जैसे बच्चा IAS के इंटरव्यू में बैठा हो। माता पिता भी दाखिले की इस प्रक्रिया को अपने मान सम्मान व प्रतिष्ठा से देखते हैं और बच्चे पर, जो अभी ठीक से खड़ा होना भी नहीं जानता, अपनी उम्मीदों का पहाड़ थोप देते हैं। अधिकांश बच्चों में तो दाखिले की इस प्रक्रिया के कारण विद्यालय जाने से पूर्व ही मस्तिष्क में विद्यालय के प्रति भय बन जाता है और वो पूरी पढ़ाई के दौरान इस भय से बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही अब बच्चे तनावयुक्त जीवन जीने को बाध्य हो रहे हैं। विद्यालय के बैग का बोझ और उस बैग से जुड़ी क्रियाकलाप तथा माता पिता की उम्मीदें कहीं ना कहीं बच्चों से उसका बचपन तो छीन ही रही हैं, अपितु उसे एक मशीनी जीवन की ओर ढकेल रही हैं। सुबह अलार्म घड़ी की आवाज़ के साथ उठने वाले आज के बच्चे घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, फिर विद्यालय का काम, फिर घर से ट्यूशन, फिर ट्यूशन का काम, मनोरंजन के नाम पर TV, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि से ऐसे घिर गए हैं कि धीरे धीरे भावना शून्य होते जा रहे हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था की इस भागम भाग विद्यालय का बोझ व परीक्षा परिणाम की चिंता, माता पिता का पर्याप्त समय न मिलना इत्यादि के चलते आज के बच्चे तनाव से ग्रस्त नजर आते हैं और इसकी अभिव्यक्ति स्वरूप छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, माता पिता की बात न मानना, विद्यालय में अनुशासनहीनता इत्यादि हमें देखने को मिलता है। बाल्यावस्था के पश्चात बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जिसे बाल मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, जिसमें बच्चे के मन मस्तिष्क में संघर्ष और विरोध चरम पर होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्येक वस्तु के बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहता है तथा अपनी एक अलग विचारधारा बनाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसके विपरीत वह यह पाता है कि सभी लोग भौतिकवादी चीज़ों के संग्रह में लिप्त हैं और उससे भी इन चीज़ों के संग्रह की उम्मीद करते हैं। अतः इस अवस्था में भी वह लोगों की उम्मीदों के पहाड़ों के नीचे दब सा जाता है और असफलता के भय के बीच तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। किशोरावस्था के पश्चात बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है, जहां उसे अब स्वयं के परिवार को बसाना होता है तथा आत्मनिर्भर बनते हुए रोजी व रोटी की व्यवस्था करनी होती है। इस अवस्था में भी भौतिकता की प्रधानता सर्वोपरि होती है, क्योंकि पहले जहां विवाह में संस्कार प्रमुख होता था तो वहीं अब दिखावापन व दहेज प्रमुख हो गया है। जीवन साथी के चयन में पैसा निर्णायक बनता जा रहा है, साथ ही साथ रोजगार के चयन में भी पैसे को वरीयता दिया जाता है। व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वह कार्य न करके उस कार्य को करता है जिसमें पैसा अधिक हो। इस प्रकार भौतिकता के प्रभाव में न तो मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और न ही रोजगार। ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को आजीवन तनाव देती रहती हैं, क्योंकि इनका आधार ही स्वार्थ होता है। आज विवाहेतर संबंध, तलाक, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज हत्या, भ्रष्टाचार इत्यादि का एक प्रमुख कारण योग्य जीवन साथी का अभाव व मनोनुकूल
रोजगार का न मिलना है। युवावस्था के बाद व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है और अब वह स्वयं में माता पिता की भूमिका में होता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति भौतिक जगत में इतना लिप्त हो जाता है कि वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में जिस तनाव का अनुभव कर चुका होता है उससे बाहर निकलने के बजाय अपने बच्चों को भी उसी जीवन प्रणाली का हिस्सा बनाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पाता है कि समाज भी इसी प्रकार की जीवन प्रणाली की उम्मीद करता है। प्रौढ़ावस्था के पश्चात व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जहां वह दादा दादी, नाना नानी इत्यादि भूमिकाओं में होता है और इस अवस्था में उसका जीवन की वास्तविकता से संपर्क होता है, क्योंकि उसकी उम्र अब ढल चुकी होती है, रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया होता है, पराश्रितता बढ़ती जाती है, परिवार के प्रेम की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन उसके बच्चे अपने भौतिकता की चमक धमक में उसे अपने साथ रखने के बजाय वृद्धाश्रम में रखना अधिक बेहतर समझते हैं। और इस अवस्था में स्वयं को पाकर जहां व्यक्ति में तनाव चरम पर होता है, तो वहीं उसे एहसास होता है कि वास्तव में जो भौतिक चमक धमक है वह एक सीमा तक तो उचित है, लेकिन उसके पीछे पागल होना मानव की सबसे बड़ी भूल और तनाव का प्रमुख कारण है। इस प्रकार भौतिकतावाद के प्रभाव में आज व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चक्र तनाव से बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति के जीवन से खुशियां घटती सी जा रही हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए भौतिक सुख सुविधाएं एक साधन के रूप में हैं जिनसे हमारा जीवन सरल बनता है, लेकिन धीरे धीरे मानव भौतिक सुख सुविधाओं को ही साध्य बनाता जा रहा है और इसका परिणाम है कि व्यक्ति तनाव, चिंता, गुस्सा, सिरदर्द, हताशा, अनिद्रा इत्यादि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त नजर आ रहा है। अतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति वैचारिकी में परिवर्तन लाए और संतोष की भावना का विकास करते हुए स्वयं के लिए समय निकाले एवं परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि के साथ प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों के साथ रहते हुए दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी खुशियों को सहेजने का प्रयास करें व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करें।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे डॉक्टर हरिओम मिश्रा की वार्ता, बढ़ते तनाव घटते खुशियां। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं अशोक खोसला।

बुलाऊंगा न मिलूंगा, न खत लिखूंगा तुझे, तेरी खुशी के लिए ये सजा दूंगा खुद को। नासिर काजमी का कलाम पेश कर रहे थे अशोक खोसला। सुगम संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

मैं तुमको अपने ख्यालों में क्या नहीं कहता, खुदा के डर से तुम्हें बस खुदा नहीं कहता। सुदर्शन फाकिर का कलाम पेश कर रहे थे अशोक खोसला। सुगम संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

सुगम संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से, और इसमें आज के फनकार हैं अशोक खोसला।

अशोक खोसला की गाई चंद गजलें अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज के

साथ साथ FM 100.1 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णय

0: को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवा

0: निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता

0: Cubite. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है और उसमें एक मल्टीप्रोंग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी।
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
2: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर को, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए,

0: कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो, वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, वो सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरीगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरीगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है, वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है। हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं सकती हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसली खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो, तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कॉम्पोनेंट है एक्सिलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं
1: जी।
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है
1: जी,
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके के इरीगेशन के जो नई चीजें, नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में कई जगह

0: एक चौथाई पानी इस्तेमाल होता फ्लड इरीगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी,
0: जैसे हमने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरीगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक से जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और ये जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार भी है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहां किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी,
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान हैं हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान हैं उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी, और हरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।